listening to Radio Olive 106.3 FM. Radio Olive. Geo, then

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: दस मॉर्निंग, आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

अरिजीत सिंह और अंतरा मित्रा की आवाज में जन्म जन्म फ्रॉम द मूवी दिलवाले ओनली ऑन रेडियो 106.3 एफएम। दिनेश आगे जी आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स में अ वेरी गुड मॉर्निंग मेरी जान। मंडे का दिन है, जुलाई 20th, और जो फैंस डिवाइडेड थे स्पेन और अर्जेंटीना के लिए, एक तो खुश होगा, एक यू नो एक साइड खुश होगा, एक साइड थोड़ा सा सैड होगा, लेकिन एक और साइड है जो कि रोनाल्डो फैंस थे, वो अलग लेवल पे खुश है कि मैसी नहीं जीता। आई जस्ट गॉट टू नो दिस। सो या द क्रेजी फैन बेस फुटबॉल हैज, एंड पर्सनली आई नो नथिंग अबाउट द स्पोर्ट। मैं थोड़ा बहुत क्रिकेट देख लेती हूँ, वो भी मुझे काफ़ी खास पता नहीं है उसके भी बारे में, लेकिन यहाँ आके जो मैंने मैडनेस देखी है, अभी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट जाग रहा है। मे बी अगले वर्ल्ड कप तक थोड़ी सी मैं एजुकेटेड हो जाऊंगी अबाउट फुटबॉल। That reminds me, मैंने खुद भी आज रेडी पहना है, तो ये गाना तो मैंने मेरे लिए बजा दिया। अब आपके लिए क्या है? लोकल ट्रेन से ये खूबसूरत गाना है, इसके पीछे एक बहुत प्यारी स्टोरी है, नॉट बिहाइंड दिस सॉन्ग बस बट दिस लोकल ट्रेन बैंड। आई विल टेल यू दैट स्टोरी कुछ देर के बाद। दिस वन्स फॉर ऑल दी आदितीज एंड हु आर नॉट आदितीज ऑल्सो, बिकॉज ये सारी चीजें हम सबकी लाइफ में एप्लीकेबल है बाबा। ब्यूटिफुल ट्रैक ये गाना, में उसकी जो एक लाइन है ना, तेनू पौना जिद दिल दी, उसके लिए सुनती हूँ और मैं रिपीट पे सुन लेती हूँ। जीने की जरूरत है भी नहीं अकेले, क्योंकि मैं हूं ना मेरी जान। बताइए मुझे कैसे है, क्या हाल चाल है। अभी उठ चुके हैं, आई ऑलरेडी गॉट फ्यू मैसेजेस ओवर हियर बाय द वे। आई नो दैट अ लॉट ऑफ यू आर ऑलरेडी अवेक, एंड जो फैंस हैं जो रात को देर तक मैच देख रहे थे, क्या आज ऑफिस जा रहे हैं या फिर छुट्टी मिल गई है आपको, आपकी किस्मत चमक गई थी, बताए मुझे 3311106 पर मैसेज करके, क्या प्लान्स है, क्या चल रहा है, एंड व्हाट्स गोना हैपन टुडे, आप क्या करने वाले हैं दिन में, कुछ तो प्लान होता है ना। मेरा प्लान था कि मैंने आज लंच में एक बढ़िया सी चीज़ बनाई थी, अब उसकी पूरी स्टोरी भी मैं आपको कुछ देर के बाद बताऊंगी। फिलहाल आपकी मैसेजेस चाहिए मुझे, गुड मॉर्निंग वाले मैसेजेस का सिलसिला भी शुरू कर दो। ऑलरेडी आई हैव गॉट अ फ्यू ओवर हियर, इंतजार करियो, लौट के रहती हूँ, फिर पढ़ेंगे मैसेजेस साथ में। स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास।

0: Joya Lucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joya Lucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joya Lucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joya Lucas, world's favorite jeweler.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Deepika Padukone.
1: Radio Olive 106.3.
3: I'm in number one. Radio Olive.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
5: सुनिए हर सुबह 6 से 10 हर जिस्तन निशा को बिंदास मॉर्निंग में
6: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
7: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

0: तनिषा
1: मोहन खान की आवाज में कट्टी बट्टी से ब्यूटीफुल ट्रैक हो जानिया एंड बहुत बुरी कोशिश थी कट्टी बट्टी मूवी अ वॉक टू रिमेम्बर की कॉपी करने की. दे ट्राइड बट ठीक है चल जाएगा. एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 एफएम त्रिशा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. एंड आई हैव गॉट अ फ्यू मैसेजेस ओवर हियर. आइए पढ़ते हैं. सो सबसे पहला मैसेज जो मेरे आने के पहले भी आ चुका था वो था नाजनी जी का. शी सेज वेक अप विद होप इन योर हार्ट एंड लाइट इन योर सोल. टुडे इज अ ब्लैंक कैनवस गो पेंट इट ब्यूटिफुली. दैट्स सच अ ब्यूटिफुल थॉट यार. एक्चुअली यू नो कल क्या हुआ वो कल पे छोड़ दो, उसको आज कैरी फॉरवर्ड करके लाने की जरूरत नहीं है. मैंने ऑलरेडी मूड खराब हो जाता है. आज जो होगा उसको आराम से देखा जाएगा एंड लेट्स ट्राई कि जो भी हो उसे एक पॉजिटिव लेंस से देखा जाए सो दैट हमारा दिन हमारा मूड ना खराब हो और साथ में दूसरों का भी हम ना खराब करें. देन वी हैव शशिकांत पाटिल जी का मैसेज. उन्होंने बड़ा सुंदर सा गुलदस्ता भेजा है एंड कहते हैं एवरेज पीपल हैव विशेज एंड होप्स, कॉन्फिडेंट पीपल हैव गोल्स एंड प्लान्स. दैट्स यू एंड मी डार्लिंग. हमारी बात हो रही है. और मोहम्मद असलम साहब ने एक कॉफ़ी का मग और गुड मॉर्निंग भेजा है. संधू जी का मैसेज आया है गुड मॉर्निंग कतर हैव नाइस डे. हरपाल संधू जी गुड मॉर्निंग टू यू टू हैव एन अमेजिंग डे. और अर्श ने गुड मॉर्निंग भेजा है. देन आई गॉट अ मैसेज फ्रॉम नबील जी. ही इज सेइंग नाइस सॉन्ग. Indeed, I agree with you. हमारी चॉइस मिलती है और बहुत बढ़िया चॉइस है. On that note, sending in another beautiful track, the local train band से. इसकी स्टोरी मैं आपको कुछ देर में आकर बताऊंगी. बाकी फिलहाल मैसेजेस करती रहिए 3311-1063 पर. क्या कर रहे हैं, कहाँ से सुन रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं तो अपना ख्याल रखिएगा, जरा संभल के ड्राइव कीजिएगा. ठीक है, सुन रही है रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास मेरी जान.
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
3: बात है सर, क्या बात, ये बात है.
4: Awesome.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

Kunal Ganjawala aur Suniti Chauhan ki awaaz mein Theremin from the movie Bhagam Bhag only on Radio Olive 106.3 FM. Tanisha aapke saath bindaas morning chal rahe hain aap aur thodi si mausam ki baat kar lete hain ji. नहीं पहले आप मुझे बताओ इस वेदर में लाइक करने वाला है क्या. इट इज 34 डिग्रीज राइट नाउ बट इट फील्स लाइक 43. जी हाँ एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड इट्स क्रेजी ह्यूमिड. आप दो सेकंड के लिए बाहर निकलो जितना मेकअप किया ना सारा मेल्ट हो जाता है बट स्टिल जब भी बाहर निकल रहे हैं ढेर सारा सनस्क्रीन लगा के निकलिए एंड स्टे हाइड्रेटेड मेरी जान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इफ यू आर ऑर्डरिंग फूड फ्रॉम यू नो आउटसाइड तो उसे ऐसे रख देंगे डिलीवर होने के बाद की थोड़ी देर में खाते हैं वो वाला सिस्टम तो करना ही नहीं है बिकॉज बहुत ज़्यादा फूड पॉइजनिंग के केसेस हो रहे हैं. इट्स टू हॉट तो खाना ख़राब हो जाता है हमें रियलाइज़ नहीं होता है हमें लगता है कि अरे अभी तो मंगाया है अभी तो ठीक होगा तो नहीं करनी है ये चीज़. एंड आई वॉज टेलिंग यू अबाउट माई किनुआ स्टोरी राइट. I prepared the full quinoa and उसमें मैंने frozen vegetables डाले थे. बनाने के बाद मुझे क्लिक हुआ कि यार ये frozen vegetables की मैंने expiry तो चेक ही नहीं करी और जब चेक करी तो पता चला वो अप्रैल में ही एक्सपायर हो गए थे. सो नाउ आई हैव टू फिगर आउट कि आज मुझे लंच में क्या करना है. सो डू नॉट डू सच मिस्टेक्स. हमेशा जैसे कशिश ने बहुत बढ़िया एक इनिशिएटिव लिया था टू रिमाइंड यू गाइस कि यू नो यू ऑलवेज हैव टू टर्न द पैक अराउंड वेन एवर यू आर बाइंग समथिंग और यूजिंग समथिंग कुछ वक्त से अगर वो आपके पास रखा हुआ है तो ज़रूर उसकी एक्सपायरी चेक कर लिया कीजिए क्योंकि अपनी सेहत का ख्याल हमें रखना होता है मेरी जान. स्टे ट्यून्ड एंड रियो बिंदास.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: दास मॉर्निंग, आरजे तनीशा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: मोहितान की आवाज में मटर गश्ती. व्हाट एन अमेजिंग ट्रैक यार, मजा आ गया. मतलब एनर्जी से भर देता है और बड़ा ऐसे अच्छा सा लग जाता है, माहौल बना देता है ना. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 106.3 FM. तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर. और मैंने पूछा था आपसे ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का सवाल.
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज.
0: And the question was, how many hearts does an octopus have? And I've got answers over here. Sandhu ji ka message aaya hai mujhe, Mr. Sami ka message aaya hai. Good morning, by the way. Main bilkul theek hoon. I hope aap bhi theek hai. And A ka bhi message aaya hai mujhe. Saath mein Vinny ka message aaya hai. And a few people more. And sab ne correct answer diya. Yes, the correct answer is, an octopus have 3 hearts. 3 hearts hote hain uske paas. And uske piche ek reason hai. So, जो ऑक्टोपस के 2 hearts होते हैं ना, दे पंप द ब्लड टू द गिल्स. यस. और जो तीसरा हार्ट होता है वो उस ब्लड को रेस्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचाता है. जी हाँ. एंड ऑल्सो जब ऑक्टोपस अगर स्विम कर रहा होता है ना, तो उसका एक जो मेन हार्ट है इट स्टॉप्स बीटिंग. दैट्स वाई यू मस्ट हैव सीन आइदर ऑन डिस्कवरी और यू नो लाइक मूवीज, और सुना होगा पढ़ा होगा कि ऑक्टोपस रादर देन स्विमिंग दे प्रेफर क्रॉलिंग थ्रू द ओशन फ्लोर. इसी वजह से, क्योंकि उनका जो हार्ट है वो बीट करना बंद कर देता है, एक हार्ट 3 में से, जब वो स्विम कर रहे होते हैं. एंड इट ऑल्सो सेव्स देम एनर्जी, और यू नो नॉर्मली उनका हार्ट वर्क करता रहता है, तो दैट इज गुड फॉर देम. एंड थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस. इसी बात पे आप डिजर्व करते हैं बढ़िया बढ़िया गाने. ओए होए वाई वे यार इस गाने में
2: चमक छोरिया सेनायन वाला.
0: हां जी,
2: चाहता हूं कभी ना बीते
0: नहीं चमकीले दिन. ओके, पर मंडे जल्दी से बीत जाए ये चाहती हूँ मैं. एंड आई वॉन्ट टू जम्प टू थर्सडे अगेन, क्योंकि वीकेंड की याद से आ रही है यार.
3: तुमसे मिलने का कीड़ा अंदर है, डेटिंग कर ले.
0: And all these amazing tracks are lined up for you in this hour. और ढेर सारी बातें obviously करनी है. लौट के आती हूँ कुछ ही देर में. आप यहाँ messages का सिलसिला जारी रखिए. 3311 1063 is the number. फिलहाल sending है जवानी तो इश्क होना है.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: हेलो, मैं हूँ नीना गुप्ता. आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3. ओलिव सुन

0: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आरजे तनिषा को बिंदास मॉर्निंग में।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: Tanisha.
1: Sukhvinder Singh ka Rekha Bhardwaj ke awaz mein aur Romeo se fan ki dukaan on the radio 106.3 FM. Tanisha, aapke saath bindaas mornings chal rahe hain yahan par, and maine kaha tha jab show start kiya tha ki today we are going to talk about something called the coin flip theory. So we all are indecisive, aisa hame lagta hai, पर हम एक्चुअली हैं नहीं. यूजुअली ना जब भी हमारे पास चॉइसेस होती हैं लाइफ में कोई भी एक डिसीजन बनाने की, आइदर यू कैन गो राइट और लेफ्ट, तो वो कन्फ्यूजन जो होती है वो एक्चुअली क्लैरिटी ढूंढ रही होती है. आपको पता होता है अंदर से कि आपको क्या चाहिए, बट यू जस्ट वॉन्ट यू नो कि कोई उसको वैलिडाइज कर दे, कोई उस पर एक यू नो अप्रूवल का थप्पा लगा दे कि हाँ सही डिसीजन है. एंड ये किसी और से ढूंढने की जगह खुद के थ्रू कैसे डिसाइड करना है वो मैं आपको बताती हूँ. एंड इट इज़ फुल प्रूफ यार, इट वर्क्स रियली वेल. सो यू जस्ट हैव टू टेक अ कॉइन. कॉइन फ्लिप थ्योरी सुनकर ये लग रहा होगा कि सिक्का उछालो, हेड्स आया टेल्स आया वही डिसीजन होगा. नो, द कॉइन विल नॉट डिसाइड कि आपको क्या करना है, कौन सा डिसीजन आपको लेना है, किस रास्ते पर आपको चलना है. यू विल डिसाइड. सो वेन यू टेक द कॉइन एंड आप एक एक ऑप्शन असाइन कर देते हो हेड्स या फिर टेल्स को, एंड जब आप उस कॉइन को उछालने वाले हो तब आपके दिल में जो चल रहा होता है ना कि यार आज हेड्स आ जाए, यार मैं ये करना चाहती हूँ प्लीज़ ये आ जाए, दैट इज़ योर डिसीजन. हमें यूजुअली पता होता है कि हमें क्या करना है, हम जस्ट एक अप्रूवल चाह रहे होते हैं, क्लैरिटी चाह रहे होते हैं. और अगर एक कॉइन आपको उसमें हेल्प कर रहा है तो हर्ज ही क्या है, ट्राई करके देखना, यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग इज Absolutely correct. Sending Zabardast hit your way. Stay tuned and Rio Bindas.
0: Ab suniye, Olive ka Zabardast hit. Zabardast.

0: cars in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joyalu Cars, world's favorite jeweler.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. Download it today.

दिल चाहता है मूवी से टाइटल ट्रैक इन द वॉइस और शंकर महादेवन. जब भी इस मूवी का कोई भी गाना सुनो ना तो मुझे दोस्तों की याद आ जाती है यार. द सेंस ऑफ दैट मूवी वाज दैट एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल मूवी इट वाज. इफ यू हैवंट यू नो इफ द जेंजीज आर लिसनिंग राइट नाउ और आपने ये नहीं देखी है तो डू वॉच दिस मूवी. इट इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं. पर वेलनेस फिक्स में आज हम बात करेंगे आंखों की. जी, जो कि हम पूरा दिन टुकुर टुकुर स्क्रीन पे देखते रहते हैं जिनसे, और उनकी बुरी हालत कर रखी है, रुकते नहीं हैं. अगर लैपटॉप स्क्रीन से हटे तो फ़ोन पे लग जाएंगे, फ़ोन से हटे तो आईपैड चाहिए साथ में, नहीं तो टीवी पे लग जाएंगे. कुछ ना कुछ देखते ही रहना है और बिल्कुल भी रेस्ट करने का मौका आँखों को नहीं मिलता है. और ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से ना हमारी जो आँखें हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती हैं, टायर्ड महसूस करने लगते हैं, आपको इरिटेशन होती है. एंड उसके लिए एक बहुत छोटी सी चीज़ आप कर सकते हैं टू सेव योर सेल्फ, टू सेव योर आइज फ्रॉम दैट पेन और दैट इरिटेशन. दैट इज अ 20-20-20 रूल. यस, सो व्हाट डज दिस 20-20-20 रूल सेज कि हर 20 मिनट्स में एक 20 सेकंड का ब्रेक लेना है आपको अपनी स्क्रीन से और 20 फीट अवे कोई रखी हुई चीज़ को देखना है. बस 20 सेकंड के लिए टेक अ ब्रेक हर 20 मिनट में, सो दैट आपकी आइज पर ज़्यादा यू नो प्रेशर ना पड़े, ज़्यादा स्ट्रेन ना हो और थोड़ा रिलैक्स करने का उन्हें वक्त मिले. और बहुत छोटी सी चीज़ है, आप अपने ऑफिस के काम के बीच में भी ये कर सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील. और इतना अपनी सेहत के लिए करना तो बनता है देखो, ठीक है. तो अगर अब तक नहीं करते हो आज से शुरू कर दो दिस 20-20-20 ब्रेक वाला रूल. ओके मेरी जान, सेंडिंग हिमेश रेशमिया की आवाज में कीड़ा. स्टे ट्यून्ड. जुबिन दास.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
0: Dr. On Air brought to you by Naseem Healthcare.
3: Hi, I'm Dr. Sarah Ali from Naseem Medical Center Al Khor. Do you know the best time to take different types of vitamins? Let's divide into two groups. First group, fat-soluble vitamin. This includes vitamin D, A, and E. It's better if you take it with fatty meal for better absorption. Second group, it's water-soluble vitamin, vitamin C and B12. Better if you take it first thing in the morning with plenty of water for better absorption.
0: Dr. On Air. Brought to you by Naseem Healthcare.
4: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: Danisha.
1: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Danisha aapke saath bindaas mornings chal raha hai yahan par. Aur Colorverse Experience jo chal raha hai is waqt Katara Cultural Village South Parking mein 15 July ko ye start ho gaya tha and it'll go on till 15th of September. I'm telling you, this is something you should not be missing. It is absolutely amazing. Ek immersive interactive attraction hai for all the people, you know, like families puri, bachcho ke liye bhi, bado ke liye bhi, sab ke liye kuch na kuch hai wahan par. So, jo visitors hai, they will go on a journey into the fictional world of Colorama. Yes, जिसने अपने सारे कलर लॉस्ट कर दिए हैं. नाउ जो गेस्ट हैं वो रीस्टोरर्स बनेंगे एंड दे विल ब्रिंग बैक कलरामास कलर्स दैट इज रेड ग्रीन एंड ब्लू जिसके थ्रू बाकी के सारे कलर्स बनते हैं. एंड दे विल बी गाइडेड बाय अ फ्रेंडली कैरेक्टर नेम्ड ह्यू. जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे कैन कंप्लीट इंटरैक्टिव मिशंस एंड चैलेंजेस. सो इट इज गोना बी सुपर फन. इसमें सात इमर्सिव जोन्स हैं जहां पे गेम्स हैं, मूवमेंट बेस्ड एक्टिविटीज हैं, इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशंस हैं. एंड टू रीस्टोर द Colorama, all you have to do is color stealing creature जो है munchers, उसको आपको defeat करना है, बस इतना है. वहाँ पे साथ ही साथ live stage performances भी चल रही है. वहाँ पे characters के साथ meet and greet भी है, creative workshops हो रही है, science demonstrations है. तो सभी के लिए कुछ ना कुछ है वहाँ पे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, all ages are covered. So do go check it out. And 35 रियाल का इसका ticket है. So बच्चों को लेकर जाइए, friends के साथ जाइए and have fun. It is such an amazing experience. और इसका वीडियो आपको जल्दी हमारे सोशल मीडिया पर देखने को मिलेगा. जी हाँ, stay tuned and see you बिंदास.

0: 26 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.

0: दस मॉर्निंग, हर जीत तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदा।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: नमस्कार, माय नेम इज आशीष विद्यार्थी एंड यू आर लिसनिंग टू कतर्स टॉप मोस्ट हिंदी एफएम चैनल 106.3 रेडियो ऑल ऑफ जियो बिंदास।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

दोनों बेकरार हो जाए, रुके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

0: Tanisha. दिलजीत दोसांझ के आवाज में वाटर ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनिषा के साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहे हैं यहाँ पर. और अब बात कर लेते हैं उस चीज की जिसके बारे में सब बात करना चाह रहे हैं. स्पोर्ट्स सिंक. जी, फीफा का जो फाइनल हुआ है कल रात, भाई अर्जेंटीनियन फैंस के जो दिल टूटे हैं, पोर्चुगल फैंस जो अलग खुश हो गए हैं कि अर्जेंटीना नहीं जीती, और स्पेन के फैंस की खुशी तो भाई अलग लेवल पे. 16 इयर्स के बाद दे हैव वन द वर्ल्ड कप एंड इट वाज अमेजिंग. बट आई डिड नॉट गो टू वॉच ऑनेस्टली, क्योंकि देर हो जाती रात को, फिर सुबह आपसे बात करने आना था तो मुश्किल हो जाता. तो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, मैं दोस्तों को टास्क दे दिया था कि आपने मुझे एकदम प्रॉपर अपडेट देते रहनी है. एंड दे वर टेलिंग कि यू नो गोल ही नहीं हो रहा है, वो तो लास्ट में जाकर एक हुआ है, दैट टू एक्स्ट्रा टाइम में, एंड दैट वाज द डिसाइडिंग गोल दैट स्पेन वन. बाकी पीपल वर फीलिंग कि अर्जेंटीना वाज नॉट इवन इन द मूड ऑफ प्लेइंग, या फिर उन्हें ये लग ही नहीं रहा था कि दिस इज वर्ल्ड कप फाइनल. एंड द बेस्ट इज फेरन टोरेस का पहला ये गोल था 2026 वर्ल्ड कप का, एंड दैट वाज द डिसाइडिंग गोल. मतलब अलग लेवल पे खुशी हो रही होगी उस आदमी को, है ना. अलॉन्ग विद दैट जो यमाल की पिक्चर्स रोटेट हो रही है, जब वो जीतने के बाद अपने छोटे भाई की तरफ देख रहा है और उसको ग्रीट कर रहा है, दैट वाज सो ब्यूटीफुल. सो मेनी अमेजिंग मोमेंट्स वर देयर एज वेल. सो या, कंग्रेचुलेशंस टू ऑल दी स्पेन फैंस एंड टू पोर्चुगल फैंस, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली हैप्पी कि अर्जेंटीना नहीं जीती. बट होता है, इट्स ओके, इट्स अ गेम, कोई जीतेगा कोई हारेगा. वी हैव टू टेक इट पॉजिटिवली एंड अगले वर्ल्ड कप का इंतजार करते हैं. तब तक सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: love for money.
1: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
2: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
1: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
2: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
1: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
3: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
5: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. Download it today.

सर रंगम की आवाज में मैं हूँ नाजिक. बहुत ही कमाल का गाना होगा ऑन रेडियो 106.3 FM. तनिषा के साथ हैं आप. बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं यहाँ पर और वक्त हो चुका है टेक टॉक में. मैं आपको एक चीज याद दिलाऊंगी आज, दैट इज वॉकमैन. जी हाँ, जब हम एक कैसेट में अपने फेवरेट गाने यू नो रिकॉर्ड करवा के डाउनलोड करवा के रखवाते थे, वी हैड टू गो टू स्टोर्स फॉर दैट स्पेसिफिकली. एंड देन देयर वाज दिस वॉकमैन और इसके साथ में ईयरफोन्स थे. एंड देन वी वुड बी जस्ट यू नो वॉकिंग अराउंड एंड लिसनिंग टू आवर फेवरेट म्यूजिक. यस, वो वाला टाइम वापस आने वाला है क्योंकि सोनी ने डिसाइड किया है दैट दे विल रीलॉन्च वॉकमैन. लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो स्पॉटिफाई और जो दूसरे म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज हैं उनके साथ होगा. तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी ऐसे स्टेप बैक हो गई कि नहीं, ज़रूरत नहीं है ना, हम फिर से वही वाला दौर क्यों नहीं ला सकते जिसमें, क्योंकि Spotify अगेन गिव्स द डिसीजन फटीग. इतने सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास सुनने के लिए, हम कंफ्यूज हो जाते हैं. एक गाना पूरा सुनते नहीं है, दूसरा याद आ जाता है, उस पर स्विच कर जाते हैं. बट वेन वी हैव दोज कैसेट्स जिसमें यू नो कुछ ही गाने हैं रिकॉर्डेड, वही है बस आपके पास डाउनलोडेड रिकॉर्डेड वट एवर इट इज़, और बस वही सुनने हैं आपको. एंड उससे एक तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, फ़ोन हाथ में नहीं है, तो इससे बेहतर बात तो क्या ही हो सकती है. आप वॉक पे निकले, जॉग पे निकले हैं और आप मस्त गाने सुन रहे हैं अपने पसंद के, कोई नोटिफिकेशन का स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, तो दैट वुड हैव बीन बेटर आई थिंक. स्ट्रीमिंग सर्विसेज इसके साथ लाना, I'm not keen. आप बताइए आपका क्या ओपिनियन है. अगर सोनी जो ये रीलॉन्च कर रहा है वॉकमैन, क्या उन्हें इन स्ट्रीमिंग सर्विसेज के साथ जाना चाहिए क्या नहीं, 3311 1063 पर बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है अबाउट दिस. और सुनते रहिए रेडियो.

0: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
1: सुनिए हर सुबह 6 से 10 आर जे निशा को बिंदास मॉर्निंग में मॉर्निंग
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. Download it today.

0: You're listening to Radio on 106.3 FM. Tanisha ke saath hain aap. Bahut khoobsurat gana Kamal Khan sahab ki awaaz mein suna humne. Awaaz from the movie Kismat. Jab mujhe bhar bhar ke rona hota hai na, I watch this movie. Kismat aur Kismat 2. Oh my God. Crazy tearjerker movies. Well, Bindas Morning mein abhi waqt ho gaya hai aaj ke special din ke baare mein baat karne ka. And today is International Chess Day. जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आता है, मुझे खेलना ही नहीं आता है चेस. मेरे भैया खेलते थे एंड आई वुड ऑलवेज आस्किंग कि भैया मुझे भी सिखाओ ना, इसलिए तुझमें इतना दिमाग नहीं है, तू नहीं कर पाएगी ये. तो मैंने भी कोशिश नहीं करी एक्चुअली. चेस पता है 1400 इयर्स ओल्ड गेम है. यस, इट ओरिजिनेटेड इन इंडिया एज चतुरंगा 6th century में, और जो वर्ड चेकमेट है वो पर्शियन वर्ड शहमात से आता है. एंड बहुत सारी चेंज हुए हैं डाउन द लाइन, यू नो, यहाँ तक आते आते इस गेम में. सो जो पहला चेस बोर्ड था उसमें कोई भी ब्लैक व्हाइट स्क्वेयर्स नहीं थे, ये लेटर ऑन इंक्लूड किया गया है. एंड ऑल्सो इनिशियली जो क्वीन थी वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होती थी चेस में, जो कि अब सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है. द यंगेस्ट अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चेस चैम्पियन इज गुकेश एंड 18 ईयर्स की एज में उन्होंने ये टाइटल जीता है. और जो लॉन्गेस्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप चला था चेस मैच का, वो था 124 गेम्स का बिटवीन 1984 to 85, एंड बिफोर इट स्टॉप्ड विदाउट अ विनर बिकॉज इट हैड गॉन ऑन फॉर मंथ्स. मतलब चलता ही रहा, सुदेव लाइक कि बस करो यार, हो गया, कोई बात नहीं. दोनों विनर हो या फिर कोई भी विनर नहीं है. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. बहुत बेसिक सी चीज पूछने वाली हूँ मैं. एक जो चेस बोर्ड होता है उसमें कितने स्क्वेयर्स होते हैं बताएं मुझे. 3311063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444106 पर. एक चेस बोर्ड में कितने स्क्वेयर्स होते हैं टोटल बताएं. और सुनते रहे रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर Song of the Hour. Yeah, guys.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: खास मॉर्निंग आरजे तनीषा के साथ हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के
2: कमर्शियल बैंक योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस सेव मोर ड्रीम बिगर विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर नो क्यूज नो हैसल जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस Download it today.

You're listening to Radio 106.3 FM, Dinesh Aapke Saath. Big Boss Mornings chal rahe hain yahan par. The thing not suna aapne. Neha Kakkar aur Nakash Aziz ki awaaz mein from the movie Fata Poster Nikla Hero. And ek aise hi real life hero ki main baat karne wali hoon abhi. So there was this businessman called Dan Price, and he was the former CEO of Gravity Payments in United States, US mein the. And ek din unhe pata chala ki unke bahut sare employees jo hain wo पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ में और जॉब भी कर रहे हैं, और जॉब करने का पर्पस ये है कि वो पढ़ पाए, क्योंकि वो जो अपना कॉलेज ट्यूशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकते. टू पे फॉर दैट फी दे वर वर्किंग देयर. तो जब उन्हें वो पता चला, ही रियलाइज्ड कि यार एजुकेशन इज सच अ इंपॉर्टेंट फैक्टर इन आर लाइफ एंड नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट. अगर मैं थोड़ी मदद कर सकता हूँ तो आई शुड डू इट. सो ही डिसाइडेड टू पे देयर फुल ट्यूशन फी. Yes, that CEO decided to pay their fee and he did that. और उसके बाद वो 2015 में भी काफ़ी फेमस हुए थे, काफ़ी न्यूज़ में थे, चर्चा में थे, बिकॉज ही रेज्ड उनकी कंपनी का जो मिनिमम सैलरी है टू $70,000 a year. Now what it shows कि ट्रू लीडरशिप इज़ वेन यू इन्वेस्ट इन पीपल. जितनी लाइव्स आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो उतना आप फ्यूचर बेहतर बना रहे हो सबके लिए. एंड दैट्स व्हाई दिस शुड बी टेकन एज एन एग्जांपल. आई एम नॉट सेइंग कि हर कंपनी को ये कर देना चाहिए कि मेरा पर्सनल डेप्ट है तो वो पे कर दो क्योंकि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसके लिए ही काम कर रही हूँ. नो नॉट दैट, बट जहाँ वेन एंड वेयर रिक्वायर्ड एंड द वे यू कैन डू, यू शुड थिंक ऑफ योर एम्प्लॉयज वेल बींग. Then only they will be able to think of your company's well-being. It's obviously a give and take. And education should be an opportunity, not a privilege. Everybody should be able to afford it. Or ek leadership mein empathy bahut zaruri hoti hai. Agar aap khud ko dusron ke shoes mein rakh kar nahi soch sakte, to aap ek achhe leader nahi ban sakte. That's what I feel. Empathy is really important, not just in leadership, in every aspect of our life. So that's why I felt so happy when I read about this and I thought of sharing this with you. If you have any thoughts over this, khul ke bata sakte hain mujhe 3311106 3 par. Stay tuned on Jio Bindas.

0: short break. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।

0: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर, और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।
1: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल, जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

0: जुम्मा जुम्मा फ्रॉम द मूवी हम ओनली ऑन रेडियो 106.3 FM तनीषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग्स चल रहे हैं और वक्त हो चुका है लेम जेम्स का. आसान सवाल लेकर आ गई हूँ मैं और आज का सवाल ये है कि एक मधुमक्खी बी अगर वो यूनाइटेड स्टेट चली जाए, यूएसए चली जाए तो उसे क्या कहेंगे. एक मधुमक्खी अगर यूएस चली जाए तो उसे क्या कहेंगे, ये आपने मुझे बताना है. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दो, बढ़िया है. 4444 1063 पर अगर एक मधुमक्खी यूएस चली जाए तो हम उसे क्या कहेंगे बताएं मुझे फटाफट से. फिलहाल भेज रही हूँ जबरदस्त हिट फॉर यू जुगनी इन द वॉइस ऑफ मीका सिंह. स्टे ट्यून एंड रियो बिंदास मेरी जान.
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.
3: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस. सेव मोर, ड्रीम बिगर. विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर. नो क्यूज, नो हैसल. जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस. Download it today.

शानर कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में दिल जाता है मूवी से वो लड़कियां हैं जो उलझुल सवाल पूछती है। यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल एम 106.3 एफएम तनिषा आपके साथ बिंदास मॉर्निंग चल रहा है यहां पर। एकदम आसान सवाल पूछा था, इसमें कैसे मुश्किल हो रही है आपको? यार सोचो जरा, एक मधुमक्खी जो US चली जाए हम उसे क्या कहेंगे? एक ही वर्ड, और आई शुड से 3 letters, यस। एंड ये चीज़ हम यूज़ करते हैं लैपटॉप्स वगैरह में और हमारे पास होती ही है स्पेयर में, तो अब इससे ज़्यादा हिंट दूँगी तो मैं जवाब ना दे दूँ बेहतर नहीं होगा? सोचो ज़रा, एक मधुमक्खी अगर US चली जाए तो उसे क्या कहेंगे? 3311063 पर मैसेज कीजिए और बताइए, या फिर कॉल कर दीजिए 4441063 पर। फिलहाल सेंडिंग ब्यूटिफुल ट्रैक, बोलना हल्के हल्के इन द वॉइस ऑफ राहत साहब एंड महालक्ष्मी अय्यर। स्टे ट्यून्ड एंड जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ओलिव शॉर्ट ब्रेक।
0: हेलो जादू।
2: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
3: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मालाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।
4: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर। नो क्यूज, नो हैसल। जस्ट बुक योर अपॉइंटमेंट ऑन द नसीम हयात ऐप एंड एक्सपीरियंस फास्टर कंसल्टेशंस। Download it today.

अरिजीत सिंह की आवाज में आबाद बर्बाद फ्रॉम द मूवी लूडो। और यार मोहब्बत में तो यही होता है, किस्मत अच्छी रही तो आबाद हो जाओगे, नहीं तो फिर पता ही है। वेल, मैंने पूछा था लेम जेम्स का सवाल कि एक मधुमक्खी अगर यूएस चली जाए तो उसे क्या कहेंगे, एंड आई गॉट आंसर्स ओवर हियर। मोहम्मद यूसुफ खान साहब, अजय जी, कार्गो, खालिद, शिवा, देन देयर इज मिस्टर जैन, Nazin, if I'm reading that right. All these people have given me the answer, and yes, the answer is correct. It is USB. I know, kafi lame ho gaya. But that's it for me today. Kal milenge ab aapse subah 6 baje, waqt ho gaya mere jaane ka, kashish aati hi hogi aapki life ko aur bhi mast banane ke liye. So dher zara pyar dijiyega use, aur agar mujhe miss karenge to aa jana, message kar dena 3311063 par, ya fir Instagram pe pahunch jao, radioalive.qs the handle, follow kar lijiye if you haven't so far, aur sunte rahiye radioalive 106.3 FM. Jio bindaas meri jaan.

0: मेरे छोटे एड्रिक्स आएंगे
1: आएंगे नहीं आ गए
2: ऑलिव शॉर्ट ब्रेक सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव And win.
4: This hour is brought to you by
5: Homes R Us. We complete your home.

क्यों उम्मीद नहीं है यार यहाँ पर, किन किन चीजों से उम्मीद लगा के रखी है और आप कह रहे हैं बचने की नहीं हो उम्मीद। वैसे यही गाना जो है जब छह दोस्तों में चार स्लाइस वाला पिज्जा फंस जाता है ना, तो पिज्जा के मन से यही गाना निकलता है। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। अब देखिए लाइफ तो मस्त है क्योंकि हर रोज जो है एकदम चटपटे कलर के कपड़े जो है वो पहने जा रहे हैं आजकल, क्योंकि समर है। देखिए विंटर में जो है आप काफ़ी ना रिस्ट्रिक्ट हो जाते हो कि यार आपको जैकेटें पहननी है, आपको जो है लेदर जैकेट काली वाली पहन लेनी है, या कोट्स जो है वो ब्लू कलर के आ रहे हैं, डार्क कलर के आ रहे हैं। लेकिन समर आपको फुल अपॉर्चुनिटी देता है कि भाई जितना चटाक कलर पहनना है उतना चटाक कलर पहनो, क्योंकि धूप से ज़्यादा तो तुम चमक ही नहीं पाओगे। इसीलिए देखिए आज अपना फेवरेट ग्रीन कलर पहन के, ग्रीन फ्लैग बन के मैं आ चुकी हूँ आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए और आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बनाने के लिए अपना शो लाइफ मस्त है लेकर। सो देखिए आज के शो में हम बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे तो फीफा का फाइनल हो चुका है, आपकी टीम जीती या नहीं जीती है मुझे नहीं पता, लेकिन जो टीम जीती उसके लिए जो है सोशल मीडिया पे काफी क्या बोलते हैं उसको, खुशी मनाई जा रही है। और साथ ही में क्रिकेट में भी बहुत कुछ हुआ उसके बारे में बात करेंगे, और मैं आई हूं तो फैशन के बारे में कैसे बात ना की जाए। सो फैशन के बारे में बात करेंगे लेकिन थोड़ी सी देर में, उससे पहले कॉकटेल टू मूवी से एक ट्रैक जो है आपके रेडियो सेट्स में, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आती हूँ और सबसे पहले कॉकटेल टू का ही कोई ना कोई गाना सुना देती हूँ आजकल, पता नहीं क्यों। चलिए फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. Jio
1: Bindas. Time check. Brought to you by Nanat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: तो जी वक्त हो गया है आपको वक्त बताने का. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 10:15. दैट इज 10:15. स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास.
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन.
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलीनियर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
5: हाय एवरीवन, मैं हूँ अरमान मलिक.
6: अरमान मलिक
5: नंबर 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: एक विलेन और गाने का नाम आवारी। अब देखिए यही वो वर्ड है जो मम्मी अक्सर कहती है जब आप समर वीकेशन में अपना होमवर्क ना करना चाहो और बाहर घूमते रहो अपने दोस्तों के साथ, तो मम्मी यही कहती है आपसे। वेलकम टू गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूं आपकी कसुशन, शो आपके लिए लेकर आ गई हूं लाइफ मस्त है एंड वक्त हो गया है आपको मौसम का मामला क्या चल रहा है वो बताने का। सो इस वक्त जो है गर्मी तो चल ही रही है लेकिन टेम्परेचर जो है वो काफी अदला बदली हो रहा है। तो इस वक्त दोहा का टेम्परेचर अगर मैं आपको बताऊं तो हो रहा है 41 डिग्री सेल्सियस। आज का हाईएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 44 डिग्री सेल्सियस और आज का लोएस्ट टेम्परेचर रहने वाला है 32 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए यार, इस बढ़ती जलती चुभती गर्मी के बीच जो है आप क्या कर सकते हैं, आपको बस पानी पीना है। बस देखिए, जैसे आप पानी पियेंगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाएगा और आपको मजे आते रहेंगे। आप काम पे भी कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे। एंड देखिए, अगर आपको गर्मी बहुत लगती है तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी, एसी जो है एकदम से बाहर से आने के बाद बहुत तेज मत चलाइएगा, उससे आपकी तबीयत जो है खराब हो सकती है। फिलहाल एक और तरीका है आपको कूल फील कराने का और वो है कूल सॉन्ग ऑफ द आवर। सो ये अमेजिंग वाला गाना पी जाऊं गाने का नाम है यार आपके रेडियो स्टेशन पर, इसे आप इंजॉय कीजिए। बाकी आने के बाद जो है जरा हम बात करेंगे फुटबॉल की, कि क्या हुआ कल के मैच में। स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।
1: Awesome. रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।

देखिए किसने किसका दिल चुराया इसके बारे में तो मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लेकिन लेकिन किसने किसके हाथ से जो है कप उड़ाया ये मुझे जरूर पता है। जहां पर कल जिस इंसान को फोन करो वो जो है यही बोल रहा था कि डिस्टर्ब मत कर मैच देख रहा हूँ, डिस्टर्ब मत कर मैच देख रहा हूँ। कल मम्मी पापा लोगों ने भी अपने बच्चों को जल्दी सोने को नहीं बोला क्योंकि वो मैच देख रहे थे। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। और देखिए मैं जो है आपको कोई नई चीज नहीं बता रही हूँ, ये तो आपको ऑलरेडी ही पता होगा कि स्पेन ने अर्जेंटीना को 1-0 से हरा कर 2026 फीफा वर्ल्ड कप टाइटल जो है वो कल अपने नाम कर लिया है। अब देखिए ये जो थ्रिलर मैच है ये मेटलाइफ स्टेडियम में जो है खेला जा रहा था एंड काफी सारे ऐसे मोमेंट्स थे जहां पर हमारा जो दिल था वो हमारे मुंह में आ चुका था, लेकिन फिर भी काफी सारे अलग अलग वेरिएशन से एक रोलर कोस्टर राइड से गुजरने के बाद हमें हमारा फीफा 2026 का विनर जो है वो मिल चुका है, दैट इज स्पेन। एंड अगर आप जो है अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे, मेसी के सपोर्टर थे, तो आई फील बैड फॉर यू, लेकिन कोई बात नहीं यार, मेसी के फैन इंस्टाग्राम पे सिर्फ यही कह रहे हैं कि यार ठीक है हार गए कोई बात नहीं हुआ, लेकिन अपने हिस्से की फुटबॉल आप खेल के हारे हैं, अपनी लाइफ पूरी फुटबॉल को दे दी, एक पूरी जनरेशन को फुटबॉल खेलना सिखा दिया मेसी ने। सो ये जो है मेसी के फैंस जो इंस्टाग्राम पे बोल रहे हैं एंड आई होप जो है ऐसे ही फैंडम जो है फुटबॉल का बरकरार रहे। बाकी एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय करके आइए, फिर जरा आपको अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो रहा है आपकी टीम के हार जाने का कि अब तो हार गई है अब बाकी अपने दोस्तों से जो है आके कैसे लड़ाऊंगा, तो उसका जो है तरीका मैं आपको आके बताऊंगी कि कैसे छोटे मोटे स्ट्रेस से डील करना चाहिए। बाकी एक अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, एंजॉय कीजिए और आपकी कोशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क

देखिए यार, कुछ भी हो जाए मैं तो आपकी ही रहूंगी, आपकी दोस्त, आपकी सखी और आपकी आरजी का सर। वेलकम जी 106.3 रेडियो आर पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड आपके लिए शो लाइफ फर्स्ट लेकर आ गई हूँ। एंड अगर आपको जीवन में कोई भी स्ट्रेस परेशान कर रहा है, मतलब किसी भी चीज़ की आपको बात बात पे टेंशन हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि यार लाइफ कितनी डाउन जा रही है, यार मज़ा ही नहीं आ पा रहा है, तो बस मैं आपको वो चटपटे या छोटे मोटे तरीके बताती हूँ जिसे आप अपनी लाइफ में जो है यूज़ कर सकते हैं और स्ट्रेस से जो है छुटकारा पा सकते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन ये जो थोड़ा मोड़ा जो छोटा मोटा सा स्ट्रेस होता है वो जो है जरूर आपके पास से जा सकता है। आज जो मैं तरीका लेकर आई हूँ वो काफी ना बचकाना है, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि यार कशिश ये तो बच्चों वाली चीज है, लेकिन देखो बच्चों को स्ट्रेस क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो बचपना करते हैं। इसीलिए आपको भी जरूरी है कि आप बचपना करें थोड़ा सा। आज आपको मैं ट्राई करने के लिए बोलूंगी एक एक्टिविटी जो है काफी क्राफ्टी सी, काफी अच्छी सी, काफी सेटिस्फाइंग सी, और वो है क्ले मॉडलिंग। हाँ जी, क्ले से अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हैं वो जो है आपके सोल को काफ़ी पीस देता है, आपके मेंटल पीस के लिए काफ़ी अच्छा होता है, एंड आपको ऐसा लगता है कि ओके आई एम मेकिंग समथिंग। अब देखिए क्या होता है कि जब आप कोई और एक्टिविटी करते हैं तो आपको कुछ एक एंड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, लेकिन क्ले मॉडलिंग के बाद आपको एक एंड प्रोडक्ट मिलता है, आपको लगता है कि ओ मैंने ना कुछ काम किया है, मुझे ये कुछ एंड रिजल्ट मिला है, और आप उस चीज़ को कहीं पर भी डेकोरेटिव आइटम की तरह रख सकते हैं, उसके बाद उसे देख देख के खुश हो सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, यू नो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं कि ओ देखो मैंने क्ले से ये बनाया। अब ये वाला जो तरीका है ये एक तो साइंटिफिकली प्रूवन है कि क्ले मॉडलिंग से जो है आपको कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मिलता है, तभी वो स्क्विशी टॉयज, स्लाइम जैसी चीज़ें जो है ये काफ़ी वायरल हो गई थी, क्योंकि क्ले मॉडलिंग सबसे हो नहीं पा रहा था। पर मैं आपको जो है स्लाइम से खेलने का सजेशन नहीं दूंगी, वो काफ़ी अनहेल्दी भी होता है एंड काफ़ी केमिकल से जो है वो बनती है कई बार स्लाइम्स, लेकिन आप जो है क्ले मॉडलिंग ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं उनके एचआर्स भी अपने फन फ्राइडेज में या ग्रुप एक्टिविटीज़ में जो है कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्ले मॉडलिंग आज एक्टिविटी थी जो मैंने स्ट्रेस बस्टर में आपको रिकमेंड की है। आप बताइए अगर आपके पास कोई स्ट्रेस कम करने का अमेजिंग वाला तरीका है। तो फिलहाल एक फ्रेश गाना यानी ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आर आपके रेडियो सेट्स पर। गाने का नाम है ऊंचा लंबा फॉर एवर। ये गाना इंजॉय करके आइए। वेलकम टू द जंगल से मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जी ओपन दास।

0: ஓ பாட்டு தான் தூடா.
1: ஆப் சுன் ரஹே ஹேன் கத்தர் கா நம்பர் ஒன் ரேடியோ ஸ்டேஷன் ரேடியோ ஆலிவ் 106.3 FM.
2: பிந்தாஸ் டைம் செக்.
3: तो जी आपको वक्त बताने का वक्त हो गया है. इस वक्त स्टूडियो क्लॉक में हो रहे हैं 11:12. दैट इज 11:12. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
4: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
6: हाय एवरीवन, मैं हूँ अरमान मलिक. 106.3 FM रेडियो ऑलिव. जियो बिंदास.

0: गाने का नाम कोई कैसे मोहब्बत। अब देखिए ये तीनों ही चीजें मुझे बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन इन तीनों ही शब्द में जो है दोनों में एक्चुअली जो है के आता है, बस इसीलिए मुझे ये पसंद है। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कसर शो, आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। अब देखिए यार, कल बहुत सारे लोगों ने बैठकर जो है फुटबॉल देखा, इंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, लेकिन जो लोग फुटबॉल नहीं देख रहे थे वो लोग क्रिकेट देख रहे थे, क्योंकि दो गोट लोग जो है कल मैच खेल रहे थे। अब देखिए दोनों को ही जो है ये स्पेक्यूलेशन लगाए जा रहे हैं कि ये जो है रोहित शर्मा का आखिरी ओडीआई हो सकता है एंड मेसी का लास्ट वर्ल्ड कप था। और काफ़ी सारे फैंस ने ये भी क्लेम कर दिया कि यार देखो ये दोनों जो लोग हैं अगर ये रिटायरमेंट लेंगे तो हम क्रिकेट नहीं देखेंगे, हम फुटबॉल नहीं देखेंगे। तो बस आज मेरा सवाल आप लोगों से इतना सा है कि क्या एक प्लेयर से जो है हम पूरे स्पोर्ट्स को एसोसिएट कर लेते हैं? क्या अगर हमारे फेवरेट प्लेयर ने वो स्पोर्ट खेलना छोड़ा तो क्या हम सच में जो है पूरे के पूरे उस स्पोर्ट को बॉयकॉट कर सकते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि क्या एक प्लेयर की आइडेंटिटी एक गेम से ज़्यादा बड़ी होती है? आपको क्या लगता है, क्या आपके कोई फेवरेट प्लेयर जो है वो अगर ये बोल देंगे कि मैं रिटायरमेंट ले रहा हूँ तो क्या वो उस पूरे स्पोर्ट से ही बैर जो है वो पाल लेंगे? बताइए मुझे 3311063 पर आकर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट पर। आपके ओपिनियन की सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट जो है वो मेरे पास ही होती है, तो जल्दी से मुझे मैसेज कर दीजिए 3311063 पर। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है आपकी नजर आ रहा है, तो इसे एंजॉय कीजिए।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है?
0: हॉलिडे मूवी से अरिजीत सिंह की आवाज में एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो बिंदा।

सुनिधि चौहान और केके की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो एलएफएम। आपकी कैसे शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड थोड़ी देर पहले मैंने आपसे ये पूछा था कि यार कई बार जब हमारे फेवरेट आइकन्स, हमारे फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन जो है वो अपने जो है स्पोर्ट को छोड़ते हैं, रिटायरमेंट लेते हैं, तो कई बार फैंस ये कह देते हैं कि अब तो हम ये स्पोर्ट देखेंगे ही नहीं, इससे हमारा मन उठ गया है। जैसे मेसी फैंस ने कहा है कि अब फुटबॉल देखने का कोई मतलब ही नहीं है, अब हम फुटबॉल नहीं देखेंगे। कल रोहित शर्मा जब ओडीआई खेल रहे थे तब ये कहा जा रहा था कि यार ये रिटायरमेंट ले रहे हैं, हमारे हिटमैन का आखिरी जो है ओडीआई है, ये रिटायरमेंट ले रहे हैं उसके बाद, तो अब हम स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट देखना छोड़ देंगे, काफ़ी सारे लोग ये कह रहे थे। लेकिन नई नवेली खबर मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि रोहित शर्मा जो है वो रिटायरमेंट नहीं ले रहे हैं ओडीआई से, ये जो है उन्होंने क्लियर कर दिया है अपने इंटरव्यू में। खैर अब वापस सवाल पे आते हैं कि क्या आपको ऐसा लगता है कि एक स्पोर्ट्स पर्सन के रिटायरमेंट लेने से हम पूरा का पूरा स्पोर्ट्स देखना छोड़ सकते हैं? क्या फैन का फैंडम जो है वो सिर्फ एक प्लेयर तक होता है या स्पोर्ट्स तक होता है? मुझे जो है शोएब अल जैदी जी ने जो है एक बहुत ही लंबा सा और प्यारा सा मैसेज लिखा है। उन्होंने लिखा है, माई नेम इज शोएब अल जैदी, व्हेन अ स्पोर्ट्स पर्सन बिकेम समवनस आइडल, they inspire people through their life, achievement and dedication. If that player retires or is no longer active, it can definitely have an emotional impact on the fans. However, we shouldn't stop supporting the sport because of one individual. We should respect and encourage the new and upcoming players who carry the game forward. The spirit of sport should always stay alive and we should continue supporting the next generation of athletes. बिल्कुल सही। या देखिए शोएब जी, मैं ना इससे ज्यादा किसी और से कभी अग्री नहीं कर रही हूँ जितना मैं आपसे अग्री कर रही हूँ कि यार जब तक आप नई जनरेशन पे ट्रस्ट नहीं दिखाओगे तब तक यार मौका कैसे मिलेगा, तब तक उनको कैसे वो फैंडम दिखेगा। सपोज अगर कल रोहित शर्मा जो है वो रिटायरमेंट ले लेते, आप क्रिकेट देखना छोड़ देते, इसके बाद जो इतने सारे लोग नेक्स्ट रोहित शर्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं उनका क्या होता? इसीलिए स्पोर्ट्स जो है उससे प्यार कीजिए। हाँ, अपने स्पोर्ट्स पर्सन से भी प्यार कीजिए, लेकिन वो उन्होंने क्या क्या खास अचीव किया है उसके लिए, ना कि बाकी लोगों की अपॉर्चुनिटी जो है आप वही बंद कर दें। फिलहाल एक बहुत ही अमेजिंग गाना सोनू निगम की आवाज में आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास। थोड़ी सी देर में आने के बाद बताएंगे हम आपको कि कौन सी मूवी आप देख सकते हैं, मूवी रिकमेंडेशन का वक्त हो जाएगा। स्टे ट्यून्ड, कहते रहिए जियो बिंदास।

0: மலங்க மூவி செய்ய ட்ராக் அப்படின்னு आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ एंड वक्त हो गया है आपको एक प्यारी सी मूवी रिकमेंड करने का. सो आज की मूवी का नाम बड़ा ही यू नो उलझुल सा है, अजीब सा है. मूवी का नाम है लूट केस. ये 2020 में एक मूवी आई थी और ये जो है एक स्लैपस्टिक कॉमेडी है. यानी अगर आपको हाउसफुल, हेरा फेरी और ऐसी मूवीज जो है वो पसंद आती है तो ये उनमें से एक मूवी है. डायरेक्टर राजेश कृष्णन का जो है ये एक स्टोरी टेलिंग बहुत ही ब्यूटीफुली दिखाई गई है एंड काफ़ी सारी यू नो ऐसे मोमेंट्स को टच कर जाती है मूवी जहाँ पर आपको ऐसा लगता है ब्रो ये तो डेली लाइफ वाली चीज़ हो गई. कुणाल खेमू की अमेजिंग एक्टिंग के साथ जो है आपको बहुत लाइट हार्टेडली जो है एक यू नो सस्पिशियस चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी. सो सपोर्टिंग विलन जो है वो बहुत अच्छा है. डायलॉग्स बहुत शार्प लिखे गए हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंस के साथ जो है लिखा गया है. अगर एक मैं बुरी बात बोलूं तो लेंथ थोड़ी सी लंबी है मूवी की. मतलब अगर आपको अटेंशन की दिक्कत है यानी आप ज़्यादा देर एक कंटेंट नहीं देख सकते तो 2 घंटे 10 मिनट की भी जो एक ये मूवी है ये आपको थोड़ा सा जो है बोर कर सकती है. लेकिन मूवी जो है वो बीच बीच में इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि आपको लगता है कि यार हो सकता है अभी अगले जो है थोड़ी सी देर में एक बहुत ही अमेजिंग सा सीन आने वाला हो. सो और वो आता भी है, इसीलिए मैं 5 में से 3.5 जो है इस मूवी को देना चाहूँगी. सो एक बार जाकर देख सकते हैं आप लूट केस. बाकी एक ऑल द फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर का वक्त हो गया है. सो इस गाने को, अमेजिंग वाले गाने को एंजॉय कीजिए, वापस आइए
1: रेडियो ऑलिव पर. फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर ये गाना
0: कॉकटेल 2 से वल्ला गाना आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर. जियो बिंदास.

इम्पॉसिबल है जी, इम्पॉसिबल है। जो शाहरुख खान 60 साल की उम्र में कर सकते हैं, वो हमारा 25 साल की उम्र में करना भी इम्पॉसिबल है। मैं गुड लुक्स की बात कर रही हूँ यार, इतना खूबसूरत दिखना हर किसी के बस की बात तो नहीं होती है। वेलकम जी, मैं हूँ आपकी कशिश, आपके लिए लाइफ मैसेज शो लेकर आ गई हूँ 106.3 रेडियो ऑलिव पर। अब देखिए यार, शाहरुख खान जी का कोई भी जवाब नहीं है, कोई सवाल भी नहीं है। देखिए उनका फैशन ऑन पॉइंट, उनके बाल ऑन पॉइंट, उनकी मूवीज ऑन पॉइंट, उनका रोमांस ऑन पॉइंट, उनके गाने ऑन पॉइंट। बस दिलवाले मूवी से गिव यू अ ट्रैक जो है आपने इंजॉय किया। अब देखिए यार, फैशन की बात हमने कर ही दी है, तो क्यों ना फैशन वाले सेगमेंट पे भी बात कर लें। सो आज मैं आपको जो फैशन एक्सेसरी के बारे में बताने वाली हूँ ना, ये काफ़ी क्वर्की होने वाली, क्वर्की मतलब काफ़ी हटके अलग सी होने वाली है। सो आपको याद है, मतलब मेरे बचपन में, मुझे तो याद है, एक अलग टाइप का यू नो बैग हम यूज़ करते थे जिसमें न्यूज़पेपर प्रिंट होता था, तो ऐसा लगता था कि ओ आपने हाथ में न्यूज़पेपर पकड़ा है, लेकिन फिर आप दिखाते थे कि दिस इज़ नॉट newspaper, this is a bag. वो पहले बच्चों के लिए आता था, लेकिन अब फैशन में आ चुका है, अब उसे बड़े यूज कर रहे हैं। एंड न्यूज पेपर के तौर पर नहीं, मैगजीन के कवर जो है वो उस मुड़े हुए से बैग में जो है होता है, मतलब ऐसा लगता है कि आपने एक मैगजीन अपने हाथ में पकड़ी हुई है, उसे मोड़ के पकड़ा हुआ है, बल्कि वो एक क्लच बैग होता है। देखिए ये इस वक्त काफ़ी ट्रेंड में है, तो अगर आप कुछ क्लासी जो है वो चाहते हैं कि मतलब यार थोड़ा सा हमारा अगर आउटफिट बेसिक है तो उसके साथ कुछ ऐड ऑन होना चाहिए, सो ये आप बिल्कुल से ट्राई कर सकते हैं। फिलहाल अगर आपके पास कोई नया फैशन हैक आ रहा है या कोई नया फैशन ट्रेंड आपको पता चला है, तो 3311063 पर आकर आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, सो वॉल्यूम बढ़ा लीजिए और ये गाना इन्जॉय कीजिए। मैं हूँ आपकी कशिश, शो लाइफ मस्त चल रहा है, इसे एंजॉय कीजिए और कहते रहिए जियो पिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Time check. Brought to you by Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
4: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
5: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
5: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
6: सलाम, प्रणाम, नमस्कार, वणक्कम। मैं हूं जैकी श्रॉफ। रेडियो ऑलिव, बोलो बिंदास।

0: कह रहे हैं मेरे हो और मेरे ही रहना, कितने पॉजिटिव है ना ये। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कसुशन शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। अब देखिए यार, काफी सारी चीजों पे मुझे को आपसे बात करनी होती है लेकिन मैं अक्सर जो है कर नहीं पाती हूँ। वैसे आज एक बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास दिन है, वो है वर्ल्ड जंप डे, यानी कूदने का दिवस। अब देखिए यार, उछलते कूदते तो रहते ही हैं अक्सर लोग, लेकिन मुझे एक बात जो है रियलाइज हुई है कि बचपन में मैं जो है बहुत उछल कूद जो है वो मचाती थी। एक सोफे से दूसरे कूद सोफे पे जंप करती थी, दूसरे से तीसरे पे जंप करती थी, फिर जमीन पे जंप करती थी, स्पाइडरमैन वाली जंप करती थी, सारी तरीके की जंप करती थी। और मुझे लगता था कि ओ माय गॉड, बाकी सारे लोग तो जंप नहीं कर पा रहे हैं लेकिन मैं जंप कर लेती हूँ, मैं कितनी अमेजिंग हूँ। लेकिन अब जो है, अब एक अलमारी के ऊपर मैंने अपना बैग रख दिया था, उसको निकालने के लिए मुझे दो बार जंप करना पड़ा। अब दो दिन से जो है मैं सबको ये बोलूँगी, मेरे ना पीठ में बहुत दर्द हो रहा है, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरी उम्र भी नहीं हुई है इतनी कोई, मतलब ये 22-23 साल की उम्र, क्या कोई उम्र होती है दर्द होने की, बताइए आप। तो देखिए आज जंप डे के दिन मैं आपको बस ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जंप करना इम्पॉर्टेंट है, जंप करना इम्पॉर्टेंट है, स्किप करना इम्पॉर्टेंट है, अपने स्ट्रेस को जंप करना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप जंप करेंगे तभी तो ऊंची ऊंची अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। सो बस एक बार मेरे यारो जंप करो, और जंप करने से ना काफ़ी सारी जो है ना हेल्थ प्रॉब्लम्स भी नहीं होती हैं, तो हेल्थ इशूज भी नहीं होंगे। सो वर्ल्ड जंप डे मुझे नहीं पता क्यों बनाया गया है, लेकिन बनाया गया है, कुछ सोच के बनाया गया होगा। मैं थोड़ा रिसर्च करके आती हूँ, आपको बताती हूँ फिर कि क्यों मनाया जाता है वर्ल्ड जंप डे। आप स्टे ट्यून रहिए, फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर आ रहा है आपकी रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

अनुराधापुर वाला रुदित नारायण जी की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो अलिफ पर। मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। अब देखिए यार, मैं तो वैसे आपको जो है कल ओडीआई मैच में क्या हुआ वो बताने के लिए आई थी, लेकिन इंग्लैंड ने इंडिया को हरा दिया तो फिर मैंने सोचा कि रहने दो, नहीं बताती हूँ। पर मैं बताने फिर भी वाली थी, लेकिन लेकिन लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको ये बता दूं कि अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते एक रील मेरी फीड में आई जिसमें जो है ये दिखाया जा रहा था कि यार ह्यूमिडिटी कितनी ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है कतर में कि बेचारी जो लड़की थी उसके घर के पर्दे जो है वो टिप टिप करने लग गए। देख रहे हैं आप क्रिएटिविटी, उसमें ये लिखा था, उसके कैप्शन में ये लिखा था वीडियो में कि कतर में इतनी ह्यूमिडिटी है कि मेरी दीवारें और मेरे जो पर्दे हैं वो भी रोने लग गए। यस, बिल्कुल सही। लेकिन ये ह्यूमिडिटी तो बाहर होती है यार, घर के अंदर तो मुझे नहीं लगता इतना पता नहीं चलता, क्योंकि मेरा चश्मा जो है वो बिल्कुल सही रहता है जब तक मैं अंदर रहती हूँ। जैसे ही मैं बाहर कदम रखती हूँ वैसे ही एक धुंध सी छा जाती है मेरी आंखों के सामने। वैसे कल जो है अगर मैं इंग्लैंड और इंडिया के ओडीआई मैच की बात करूँ, वैसे तो फुटबॉल के चलते जो है ये मैच बहुत कम लोगों ने देखा, तो मैं बता देना चाहती हूँ कि क्या कुछ हुआ इस मैच में। सो बेसिकली जो है रोहित ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। सो पहले सबको लग रहा था कि यार ये आज ये जो मैच है ये रोहित शर्मा का आखिरी मैच होगा, लेकिन लेकिन लेकिन बिल्कुल नहीं, उन्होंने स्पेकुलेशन सारे जो है हटा दिए कि नहीं मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, मुझे इतना जल्दी रिटायर करने का क्यों पड़ा रहता है आप लोगों को। वैसे इंग्लैंड ने इंडिया को थर्ड ओडीआई में 27 रन से हरा दिया और सीरीज को जो है 2-1 से अपने नाम कर लिया है। लेकिन कोई बात नहीं, मैच बहुत अच्छा था, बहुत इंटरेस्टिंग था। हिटमैन रोहित शर्मा ने जो है एक बहुत ही करारा जवाब दिया, टारगेट का पीछा करते हुए उन्होंने इंडियन टीम के लिए जो है कप्तानी पारी खेली और 138 रन बनाए, 17 फोर्स, 5 सिक्सेस और एक ताबड़तोड़ सेंचुरी लगाई है। एंड गिल मतलब शुभमन गिल यानी मेरी क्यूटी और कोहली, इन दोनों ने भी बहुत ही बेहतरीन खेला है, 77 रन, एंड विराट कोहली ने 74 रन जो है वो बनाए। सो ऑल इन ऑल इंडिया ने एक बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जीत नहीं पाए क्योंकि इंग्लैंड ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया। देखिए जो जिसने किया है वो किया है, वो तो मानना पड़ेगा ना। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, आप स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.

0: देखिए, आप लोगों से बात करने के बाद दिल को करार तो आ ही जाता है, आप सबको मुझ पे प्यार भी आता ही होगा। अगर इरिटेट हो जाते हो तो कहने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? मेरी हाँ में हाँ मिला दो, क्या जाएगा, बेचारी बच्ची का जो है ना दिन बन जाएगा। वेलकम टू 106.3 रेडियो आलू पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो, आप मेरे साथ लाइफ मस्त है एंजॉय कर रहे थे। हाँ जी, ये इसलिए बोल रही हूँ मैं क्योंकि अब मेरे यहाँ से जाने का, आपको चाचा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। तो मैं चलती हूँ, वही बोलूंगी जो हर रोज बोलती हूँ आपसे, कि अपना ख्याल रखिए, खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि इस गर्मी में मैं कुछ भी जो है हजम कर सकती हूँ लेकिन टैनिंग बिल्कुल भी नहीं। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, रेडियो ऑलिव पे अमेजिंग वाले गाने आते रहेंगे आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें इंजॉय करते रहिए। फिलहाल जाते जाते ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर आपको आपकी नज़र में करते हुए जा रही हूँ। सो ये गाना इंजॉय कीजिए, बाकी इंस्टाग्राम पर रेडियो ऑलिव के पेज पर जाकर आप हमें ढूंढ सकते हैं, सारे आर्जेस आपको वहीं पर मिल जाएंगे। 3311063 हमारा व्हाट्सएप पर नंबर है, इस पर आकर भी आप हमसे बातचीत जारी रख सकते हैं। फिलहाल ये अमेजिंग गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर,
1: रेडियो ऑलिव पर।
2: ये गाना फ्रेश है,
1: फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर।
2: ये गाना
0: एंजॉय करते रहिए, कहते रहिए जियो बिंदास, टाटा बाय बाय, टेक केयर।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: Olive Music Marathon. 1 ghanta. 1 ghanta. Non-stop back to back.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
0: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक गाने।

0: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
1: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

0: से पांच विद आरजे सुबेर रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
3: आज दिन चढ़िया तेरे रंग वर्गा तेरी चुम्मन पिछली संग वर्गा है किरना दे विच नशा जिहा किसे छीमे सप दे डंग वर्गा आज दिन चढ़िया

0: ले आ तेरे रंग वरदा।
1: आप सभी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। ये है ऑलिव रिचार्ज और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पे हम एक जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम बातें करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे और ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ आने वाले 3 घंटे वक्त बिताएंगे। तो बातें तो यहाँ पे बहुत बढ़िया वाली हम तैयार कर आए हैं। आप अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए आपके क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ। फिलहाल यहाँ पे गाना प्ले करते हुए शो को किक स्टार्ट करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: is brought to you by.
1: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

0: आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहूंगा मैं, मगर कहानी के पहले जरा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देते हैं। गर्मी का मौसम है, हम सब जानते हैं कि भाई बहुत ज्यादा गर्मी है, थकान होती है। तो ऐसा ही हो रहा था दिल्ली में भी 1906 के वक्त। जी हाँ, बहुत तगड़े तगड़े हीट स्ट्रोक हो रहे थे, लोगों की तबीयत खराब हो रही थी, बहुत बुरा हाल था। तो उस टाइम पे एक यूनानी प्रैक्टिशनर थे, हकीम हाफिज अब्दुल मजीद। ये एक यूनानी प्रैक्टिशनर थे, इन्होंने एक मेडिसिनल सिरप बनाने की कोशिश की जिससे लोग जो हैं उस टाइम के, मतलब नॉर्दर्न इंडिया के सबकॉन्टिनेंट के गर्मी को सह पाए और हेल्थी रह पाए, थोड़ा सेफ रह पाए। तो उन्होंने क्या किया, यूनानी मेडिसिन के साथ साथ कुछ नेचुरल इंग्रेडिएंट्स को भी ब्लेंड किया, जैसे कि डमास्क रोजेस, वाटर लिली, लोटस, उनके साथ साथ स्पिनच, चिकरी, कैरेट, ऑरेंज और वाटरमेलन के एक्सट्रैक्ट्स। और ये जो एक दवाई बनी, इसको इन्होंने काफ़ी डार्क बॉटल्स में बेचना शुरू किया था। और ये कूलिंग सा फ्लोरल टेस्ट वाला ड्रिंक जो है बहुत जल्दी फेमस हो गया और एक नीश मेडिसिन से ये एक वाइल्डली पॉपुलर हाउस होल्ड बेवरेज बन गया था। इस बेवरेज का नाम क्या है मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में, मगर आप जरा गेस कीजिए, मुझे बताइए 3311063 पर, और उससे जुड़ी एक याद भी मैं बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।
3: कूल सॉन्ग।
4: कार्निवल द लास्ट राइड।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे हम बात कर रहे थे उस यूनानी प्रैक्टिशनर हकीम मजीद के एक टॉनिक के बारे में जो सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज्यादा फेमस हो गया और एक हाउस होल्ड ड्रिंक बन चुका है वैसे एक्चुअली. तो मैंने पूछा था कि भाई जरा गेस कीजिए उस ड्रिंक का नाम क्या है. कुछ लोगों ने सही गेस किया है. मैं बात कर रहा था रूह अफजा के बारे में और रूह अफजा जो नाम है इसका मतलब है सोल रिफ्रेशर करके. ठीक है, तो हमें पता है कि कैसे कि ये रूह अफजा जो है एग्जिस्टेंस में आया, इसे क्यों बनाया गया, मगर इसकी एक और कहानी है. 1947 में जब पार्टीशन हुआ तो हकीम अब्दुल हमीद जो हैं, जो मजीद फैमिली के बड़े बेटे थे, वो इंडिया में रहे और उन्होंने हमदर्द इंडिया स्टार्ट किया और उनका छोटा भाई हकीम मोहम्मद साइद जो है वो पाकिस्तान चले गए. वहाँ पे जाके उन्होंने हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ पाकिस्तान जो है शुरू किया और ये दोनों बिजनेस जो है काफ़ी फ्लोरिश कर गए इंडिया और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में भी जो है एक थर्ड ऑटोनोमस नाम में जो है ये शुरू हुआ हमदर्द लेबोरेटरीज वक्फ के नाम पे. और पूरे सब कॉन्टिनेंट को जो है रूह अफजा ने अपना एक बहुत ही बड़ा फैमिली बना लिया, अगर मैं कह सकता हूँ ऐसे तो, क्योंकि हर कोई गर्मी के टाइम में रूह अफजा की ओर ही जाता है. और मुझे भी याद है जब हम गर्मी की छुट्टियों में सुबह सुबह निकल जाते थे क्रिकेट खेलने के लिए और जब आते थे तो कड़ी धूप, उस धूप में वापस आके जब घर में किचन के अंदर घुसते थे तो मम्मी ऐसे रूह अफजा बना रही होती है तो ग्लास में स्पून लगने की जो आवाज़ आती है ना भाई, उसी से चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और एकदम से जब हम जाके ठंडा ठंडा वो रूह अफजा जब पीते हैं तो दिल को जो सुकून मिलता है भाई यार, मैं क्या बताऊँ, मतलब बचपन की याद आ गई. उसके साथ साथ दिल्ली में एक बहुत फेमस चीज़ है, वो है मोहब्बत का शरबत. रूह अफजा को दूध में मिला के उसमें थोड़ा वाटरमेलन कट करके डालते हैं और आइस वाइस डाल के एकदम बढ़िया शरबत बना के देते हैं, मजा आ जाता है पी के, सारी गर्मी दूर भाग जाती, इतना रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक है ये. मगर इस ड्रिंक के पीछे की कहानी किस किस को बताती बताइए मुझे 3311063 पर. फिलहाल गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और भाई यहाँ पे एक छोटा सा रिएक्शन मैं शेयर करना चाहूँगा, ठीक है। तो मेरी एक फ्रेंड है, नफना उसका नाम, वो इंडिया में है, केरला में है। तो मैं कल यार ऐसे बैठा हुआ था, एकदम से ना उसका कॉल आया। तो मैं ऑफिस के बाद ऐसे बैठा हुआ था, तो मैंने पूछा क्या हो गया। तो बोली कि यार तू फ्री है अभी? मतलब हाँ मैं फ्री हूँ, होना मुझे बात करनी है। तो मुझे लगा कि भाई कुछ होगा, अर्जेंट बात होगा, कुछ तो होगा, कुछ ना कुछ कोई मलाल होगा दिल में जो रहा होगा, जो शेयर करना होगा, या फिर कोई दिक्कत होगी। मैं ऐसे सोचने लगा, मैं थोड़ा सा ऐसे एंग्शियस होने लगा। तो उसने बोला यार मैंने ना, मैं वापस आऊँगा, देखी मैं देख के निकल ही रही हूँ, मैं गाड़ी में बैठी हूँ, मेरे जो आंसू हैं वो बंद नहीं हो रहे हैं, मतलब वो मूवी इतना मुझे इम्पैक्ट कर गया। तो मैंने बोला हाँ यार एक्चुअली मूवी तो बहुत बढ़िया थी, बहुत ही बढ़िया मूवी थी। नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, सबको पसंद नहीं आएगा, मगर जिनको पसंद आएगा उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। दिल को अगर वो मूवी छू गई तो भाई वो ऐसे एक जगह बना लेती है, इजीली वो हमारे दिल से निकलती नहीं है, मोस्टली जो इम्तियाज़ अली की मूवीज़ होते हैं वैसी। मगर इसका पूरा जो प्रेमाइज था अलग था, वो एक अलग ही चीज़ थी। तो मुझसे कह रही थी कि यार क्या यार, मतलब कैसा प्यार था ना उस टाइम पे, मतलब लोग इतना ज़्यादा उस चीज़ को दिल में रख के घूमते हैं। उसमें डिमेंशिया हो जाता है नसरुद्दीन शाह के कैरेक्टर को, मगर सब कुछ भूलने के बावजूद भी वो अपने प्रेमिका को नहीं भूलते, उनको दिया गया एक वादा नहीं भूलते, वो क्लोजर नहीं मिलता उन्हें तब तक। इतना ब्यूटिफुली उस चीज़ को पोर्ट्रे किया है। सोच के देखिए, एक इंसान जो वो भाषा नहीं बोलता, मतलब मेरी फ्रेंड हिंदी नहीं बोलती, उसने मूवी देखा और शी वॉज लाइक यार मैं थिएटर में तो मेरे आंसू झर झर बह रहे थे, क्या बताऊं मैं करके। तो आर्ट का ना यही होता है पावर। शायद आप जो मूवी देखते हो उसकी लैंग्वेज आपको नहीं पता होगी, कोई गाना आप सुनते हो उसकी लैंग्वेज आपको नहीं पता होंगे, मगर उसकी फीलिंग आपको ऐसे छू जाती है कि आपको लगता है यार क्या बात है यार। और वहीं पे आर्टिस्ट जो है बाकी हर तरह के इंसान से थोड़ा अलग बैठता है, क्योंकि वो अपने काम से किसी और इंसान के अंदर ऐसी फीलिंग जगा देता है जो उसे पता भी नहीं होती कि उसके अंदर थी। और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स। कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: آپ سن رہے ہیں ریڈیو اولیو 106.3 FM جیو بنداس.
2: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
3: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
2: योर स्पेशल ऑफर?
3: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
2: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
3: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
4: Hi there friends, this is DJ Suketu. DJ Suketu. You're listening to Radio Olive 106.3 FM, Geo Geo Bindas.
5: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो भाई फिटनेस से रिलेटेड एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। कहते हैं कि एक्सरसाइज के बाद मसल्स जो है इंसुलिन के लिए ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। रिसर्च ये दिखाती है कि वर्कआउट के बाद मसल ग्लूकोज को ज्यादा एफिशिएंटली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इससे ब्लड शुगर रेगुलेशन इंप्रूव होता है और बॉडी का जो इंसुलिन काम जो है अपने आप बहुत ही आसानी से कर लेता है। और जब एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स एनर्जी के लिए अपना स्टोर्ड ग्लूकोज यूज कर लेते हैं। वर्कआउट के बाद वही एनर्जी स्टोर्स को रिफिल करना चाहती है, इसलिए मसल ब्लड से ग्लूकोज को ज्यादा इफेक्टिवली ले लेते हैं, मतलब खींच के निकाल लेते हैं। और इस प्रोसेस को इंप्रूव्ड इंसुलिन सेंसिटिविटी कहा जाता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है मैं बता देता हूँ। ब्लड शुगर लेवल्स को ये बेटर तरीके से रेगुलेट करता है और बहुत ही अच्छे से क्या कहते हैं इस रेगुलेशन में हेल्प करता है। इंसुलिन का कम एफर्ट से ग्लूकोज सेल तक पहुंचने में जो है उसे हेल्प मिलती है और लॉन्ग टर्म में टाइप 2 डायबिटीज का रिस्क जो है कम करने में भी सपोर्ट मिलता है। ये इफेक्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और एरोबिक एक्सरसाइज दोनों के बाद देखा गया है। इसलिए रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी को डायबिटीज प्रिवेंशन और ब्लड शुगर मैनेजमेंट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास ऑलिव रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.
0: रेडियो

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम, ऑलिव रिचार्ज में मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे भाई एक मूवी के बारे में बताना चाहूंगा। अगर आप थोड़े रोमांटिक्स किस्म के इंसान हैं, आपको किसी के छोड़ के जाने का दिल का दर्द है, उसके साथ साथ रोमांटिक ड्रामा अगर आपको पसंद है, तो एक बहुत ही प्यारी मूवी है 500 डेज ऑफ समर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया मूवी है ये मूवी। जब आप देखोगे तो रिलेशनशिप के डायनामिक्स के बारे में, जब बहुत ही पसंदीदा इंसान जब हमारे लाइफ से चला जाता है तो क्या क्या होता है, कैसे होता है, मूव ऑन करने के बाद क्या फील होता है, उन सब के बारे में बहुत ही क्लियर कट आइडिया जो है आपको मिल जाएगा। अगर आपने मूवी अभी तक नहीं देखी तो देखिए, बहुत प्यारी मूवी है। अगर आप आशिक हैं तो भाई बहुत मस्त लगेगा आपको, अच्छा लगेगा आपको, कहीं ना कहीं ये मूवी आपसे रिलेट कर जाएगी। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, गाने प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबेर, रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर, जियो बिंदास।
1: This hour is brought to you by.
2: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान संदीप। और भाई यहाँ पे कुछ टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा आपके लैपटॉप के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, इन सब चीज़ों के लिए कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ें जो है मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि अगर आप अपने कंप्यूटर को या लैपटॉप को रीस्टार्ट करेंगे तो उसके मेमोरी कैशेस जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, रनअवे बैकग्राउंड प्रोसेसर्स जो हैं वो भी बंद हो जाएंगे, उसके साथ साथ जो माइनर पेंडिंग सॉफ्टवेयर अपडेट्स अगर आप उनको इंस्टॉल करोगे तो थोड़ा और आपका लैपटॉप जो है अच्छा रहेगा या फिर आपका कंप्यूटर जो है सही से चलेगा। और बैटरी को प्रिजर्व करने के लिए आप लिथियम आयन डिवाइस जो बैटरीज होती हैं इसको 20-80% के बीच में चार्ज कीजिए। मैंने कई दफ़ा ये फ़ोन के बारे में बताया आपको, मगर लैपटॉप के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव रहता है। उसके साथ साथ लैपटॉप के स्क्रीन को क्लीन करते वक्त मैंने कई दफ़ा देखा है लोग गलत कर देते हैं, सीधा स्प्रे उठा के मार देते हैं या फिर जो क्लीनिंग लिक्विड होता है वो सीधा स्क्रीन में लगा देते हैं, ऐसे नहीं करते। एक माइक्रो फाइबर क्लोथ लेके उस पे हमको जो है जो भी हमें क्लीनिंग लिक्विड होता है स्प्रे करना होता है, फिर हम उसे लगाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो ये चीज़ कभी कभी गलत हो जाता है और स्क्रीन डैमेज हो सकता है, तो ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर आपके हाथ में ऐसा कोई टेक्नोलॉजिकल डिवाइस है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है जिसका आप ख्याल रखना चाहते हैं तो इन टिप्स का आप इस्तेमाल कीजिए। और यही बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: Kai ke saath CNG ho ya fuel type buses 64 seater ya compact 26 seater paiye behtar mileage aur maximum comfort Carmel Group ke saath ab safar without suffer visit Carmel Group now
1: life 24/7 chalti hai to dental care sirf office hours mein kyu mile Naseem Surgical and Medical Center C Ring Road ka dental department ab hai 24/7 open routine care treatment ya dental emergency expert dentist aur advanced facilities ke saath care har वक्त अवेलेबल है कॉल 4411133 आल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम
2: हाय गाइस दिस इज जुरिता गांधी रेडियो ऑलिव आई एम नंबर 1 यू आर लिसनिंग टू मी ऑन रेडियो ऑलिव जियो बिंदास रेडियो
3: ऑलिव आई एम नंबर 1 ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर 1 एशियन रेडियो नेटवर्क

इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी, वो भी बिना किसी लॉस के.

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. आपको पता है यार, बॉलीवुड में टाइपकास्टिंग होती रहती है. कभी एक कैरेक्टर अगर एक इसमें हिट हो जाता है, एक एक्टर का, तो एक्टर के आने वाले सारे कैरेक्टर्स उसी कैरेक्टर जैसे होते हैं जो हिट हो गया है. ठीक है, तो ऐसा ही कभी कभी सिंगर्स के साथ भी हो जाता है. कोई सिंगर अगर एक बहुत ही अच्छा गाना गा देता है, अगर वो सैड सॉन्ग होता है तो उसको फिर सैड सॉन्ग के लिए ही यूज़ करते हैं. तो सोनू निगम एक बार बता रहे थे कि यार, मैं छोटा भाई बंदा 18 साल की उम्र में इंडस्ट्री में आया, सैड गाने मुझे मिलते थे गाने के लिए, तो मैंने देखा कि मुझे सैड गाने ही मिल रहे हैं. और मुझसे बड़े बड़े लोग, मतलब 16 साल 18 साल बड़े लोग जो हैं, वो रोमांटिक गाने गा रहे हैं, फन गाने गा रहे हैं, मुझे नहीं मिल रहा. और उस टाइम में किस्मत अच्छी हुई कि मुझे एक गाना मिला जिसका नाम था दिल. दीवाना दीवाना है ये दिल दीवाने ने. आगे मैं नहीं गा रहा, आगे सोनू भाई गाएंगे तो ये अच्छा रहेगा. मगर इस गाने ने एक्चुअली उनके उस इमेज को तोड़ दिया था. और वो बता रहे थे कि इस गाने का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि इसने बचा लिया था मुझे. और यही बात बताते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Joy Alukas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alukas. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alukas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alukas, world's favorite jeweler.
2: Commercial Bank presents CB 2026 million reals dream.
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
2: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
2: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
4: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज. ऑलिव रिचार्ज.
0: ऑलिव रिचार्ज. रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास.
4: ऑलिव रिचार्ज.
5: This hour is brought to you by.
6: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ. पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव और यहां पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा। वो ये है कि अगर आपने अभी तक रेडियो ओलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया, फेसबुक पेज को आपने फॉलो नहीं किया, तो जानिए ऐसा ना कीजिए, सीधा जाइए इंस्टाग्राम पर, सर्च कीजिए radioolive.qa, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कीजिए, पोस्ट को चेकआउट कीजिए, कॉन्टेंट चेकआउट कीजिए, फीडबैक दीजिए, उसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो कहीं पे भी हैं, चाहे वो आपके मुल्क में है या फिर किसी और कंट्री में है, उनको भी आप हमारे ऐप के बारे में बता सकते हैं ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सके। तो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से लेके बुर्ज अल दोहा तक हर जगह हम ही हम हैं। तो आप जरूर उन्हें ऐप के बारे में बताइएगा और डाउनलोड करने के लिए यू कैन चेकआउट ऐप स्टोर और प्ले स्टोर, डाउनलोड कीजिए, इस जर्नी में हिस्सा बनिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। Shackman की पावर पैक्ड रेंज, हैवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: लगा और हो जा रिचार्ज। ओलिव रिचार्ज।
0: ओलिव रिचार्ज। रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
1: ओलिव रिचार्ज।
2: This hour is brought to you by.
3: इस वेकेशन सीजन सरप्राइज करें अपने लव्ड वंस को मलाबार गोल्ड एंड डायमंड के गिफ्ट्स के साथ। पाए फ्री कैश वाउचर्स हर डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेस पर और एक्सचेंज करें अपनी पुरानी गोल्ड ज्वेलरी वो भी बिना किसी लॉस के।

भाई धीरे धीरे टाड़ा मोबाइल करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हमारा वक्त यहाँ पे खत्म होने वाला है। 3 घंटे थर थर थर करके निकल गए, पता भी नहीं चला। जैसे हाथ से रेत फिसलते हैं वैसे ही जो है वक्त भी हमारे हाथ से निकल गया, 3 घंटे चले गए। तो जाने का वक्त आ चुका है, तो धीरे धीरे टाटा बाय गुड बाय गुड नाइट तो अभी बोलेंगे नहीं, क्योंकि वक्त है। और सिमरन आएगी तो भाई आपकी इवनिंग को जबरदस्त कर देगी, बढ़िया तरीके से आपको जो है एंटरटेन कर देगी। तो खुली बाहों से सिमरन का स्वागत कीजिए, और जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार जो है आप सिमरन को दीजिए। जाते जाते जाते हम यही बोलेंगे कि आप अपना ख्याल रखना, अपने खास लोगों का ख्याल रखना, और हमें जरा दुआओं में याद रखना। स्टे ट्यून्ड, ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM, और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ जब रात को नींद नहीं आती ना तो सुबह ऑफिस में आके जो है वो बंद होती रहती है। मैं क्या जी सुने हो कितना की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है तुडे नाल। लेकिन नींद नहीं आई सलमान खान के फैंस को उनकी रीसेंट वीडियो देखे। रीसेंट आपने देखा होगा कि सलमान खान की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ओल्ड लग रहे हैं। इट सीम्स कि यार कुछ अंदर ही अंदर उनको खाया जा रहा है, वो कौन सी चीज़ है वो नहीं पता। लेकिन अब क्या है कि उनके फैंस ने ऐसे बोला कि यार कुछ तो दिक्कत जो है वो चल रही है। सो कल सलमान खान ने अपनी इंस्टाग्राम पे अपनी फोटो डाली और लिखा है कि आप सबकी तबीयत कैसी है। वो देख सब कुछ रहे हैं लेकिन या पता नहीं क्या चीज है बट यार वो बढ़िया रहे। मैं क्या जी आप ठीक हो, कैसा रहा आपका आज का दिन? 3311106 पर आप मुझे बता दीजिए। अब सलमान खान की बात

सो बेबी, अपने पूरे दिन के बारे में बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा कि आपको मुझे व्हाट्सएप करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर मैं आपको बता देती हूँ, 3311063 पर। बस आ रही हूँ थोड़ी देर में, टिल देन वाइब सेट किया आपके लिए, गहरा हुआ।

0: Olive, 106.3 FM, Gio Bendaz. Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
1: अब सिर्फ savings नहीं, सपने grow होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals cash prizes.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना account balance बढ़ाइए. हर 10,000 reals growth पर पाइए एक coupon.
1: दूसरा, अगर salary 4,000 plus है या 50% save किया है, तो आप eligible है.
0: तीसरा, नए customers को पहली salary या 10,000 funding पर guaranteed coupon. और चौथा, 9 महीने regular salary पर पाइए एक extra कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
3: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
4: हाय, दिस इज विपाशा बासु.
5: हाय, आई एम राजकुमार राव.
6: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा.
7: हाय, दिस इज दिशा पार्डी.
3: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM.
8: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे,
9: आरजे सिमरन के साथ.
10: Zabardast evening, make you drive golden with.
11: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
12: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ਸੋਨੀਓ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5:21:42 ਸਟੂਡੀਓ ਕੀ ਘੜੀ ਪੇ
1: ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ brought to you by Nanatal Pahar the ultimate katri adventure souk waqif alcohol
0: so yes har koi is cheez ke bare mein baat kar raha hai to main bhi karungi bilkul match ke bare mein baat karte hain kal final tha fifa world cup ka so yeah finally ye jo itne mahine se chalta aa raha tha iska match uska match ab final jo hai wo ho chuka hai aur team jeet bhi chuki hai so to be very honest ye maine aapko pehle bhi bataya ki match mujhe utna zyada samajh jo hai wo nahi lagta hai lekin mujhe match dekhne mein bada maza aata hai jo vibe set hoti hai wo mazedar hoti hai lekin thoda bahut to aane lag gaya hai ab ऐसा क्योंकि इतने मैच देख लिए और कतर में रहते हुए थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो आ गई है सो स्पेन एंड अर्जेंटीना का कल मैच था एंड ऑफ कोर्स मैं स्पेन को ही सपोर्ट कर रही थी सब लोग बोल रहे थे तुमने ब्लू पहना था इसीलिए तुम अर्जेंटीना को सपोर्ट कर रहे थे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है यार मैं दिल से चाहती थी कि कल स्पेन जीते बट क्या हुआ कि पहले जब फर्स्ट हाफ हुआ सेकेंड हाफ हुआ लाइक क्या चल रहा है यार गोल ही नहीं हो रहा है कोई लास्ट के जो एक्स्ट्रा 30 मिनट जो मिले थे राइट उसमें जो गेम का मजा आया है जबरदस्त और जो चेहरे पे खुशी थी स्पेन के वो अलग लेवल की थी है ना पहले मैंने सोचा था कि यार फिनाले होने वाला बड़ा तगड़ा क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट थे बहुत सारे आर्टिस्ट ने परफॉर्म भी किया सब कुछ था है ना बट फिर भी लास्ट में ट्विस्ट आया और मतलब मजेदार गेम थी यार मजा आ गया आपने मैच कहां पे देखा घर पे देखा बाहर देखा बताइएगा मुझे क्या आप जो टीम चाह रहे थे वही टीम जीती है या फिर आप थोड़ा सा ऐसा यार मेरी टीम नहीं जीती है यार अर्जेंटीना जीतनी चाहिए थी 3311106

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर। द कूलेस्ट डील्स ऑन ज्वेलरी परचेसेस फॉर दिस समर आर हियर। फ्री कैश वाउचर्स ऑन योर डायमंड ज्वेलरी परचेसेस, 3.99% ऑनवर्ड्स अश्योर्ड लोवेस्ट मेकिंग चार्जेस एंड 0% डिडक्शन ऑन ऑल गोल्ड एक्सचेंज एंड मच मोर, ओनली एट जॉय अलुकास। Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucas in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
3: गर्मी की तपती धूप में हमारे घरों का आराम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा कदम बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकता है।
4: अपने एयर कंडीशनर का तापमान 23 से 24 डिग्री पर सेट करें और खिड़कियां बंद रखें। इससे हम सभी मिलकर बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं।
3: ऊर्जा संरक्षण का मतलब त्याग नहीं है, बल्कि यह जागरूकता है। #KeepItSustained, क्योंकि सुविधाएं, कृतज्ञता और संसाधनों के प्रति जागरूकता ही उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकती है।
5: कतर जनरल सिटी एंड वाटर कॉर्पोरेशन, करामा।
6: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। कतर की नंबर वन आरजे,
7: आरजे सिमरन के साथ।
8: Zabardast evening, make you drive golden with.
9: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alucas. Joy Alucas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
10: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

आप ये गाना सुन रही थी ये ना, और उतनी फील के साथ आप लोगों के मैसेजेस भी पढ़ती हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मैं हमेशा एक चीज बोलती हूँ कि हम सब ना बहुत बार बहुत सारी चीजें अपने दिल में सोचते हैं कि लाइक अरे यार रेडियो पे गाना अच्छा चल रहा है, अरे सिमरन तुमने कितनी अच्छी बात बोल दी, या फिर हमने बोल दिया सिमरन तुम कितनी अच्छी हो, ओके फाइन। सो ये बातें दिल में रख के कोई मतलब होता नहीं है, जब तक वो मेरे तक नहीं पहुंचेंगी तो फिर मजे नहीं है ना यार। तो अगर दिल में कुछ भी आए तो बोल दिया करो 3311।

चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाऊंगा, वो अट्रैक्ट यार बस थोड़ी देर में आएगा। एंड यस, दिल की बात मैं बोल रही थी, दिल की बात यही है कि बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देती हूँ कि कतर में है या फिर कहीं पे यार जिस भी जगह पे है, रूल्स इसीलिए बनाए जाते हैं कि उनको तोड़ा ना जाए, तो रूल्स को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो कतर में अगर आप जो है वो यू नो अनलाइसेंस्ड ड्रोन चला रहे हैं या फिर अनमैन्ड एयरक्राफ्ट जो है बिना लाइसेंस के वो जो है वो आप चला रहे हैं, तो फिर आपको जो है रूल तोड़ने के हिसाब से 7 साल की जेल तो हो ही सकती है। उसके साथ साथ इतनी जीरो है ना इसमें, जितनी आप गिन नहीं पाएंगे उतना फाइन आपको देना पड़ जाएगा, 300,000 समथिंग, राइट? सो उतना आपको देना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि ये वाला सीन जो है वो आपकी लाइफ में कभी भी ना आए। आप जिस भी कंट्री में रह रहे हैं उसके रूल्स जो है वो फॉलो करना बहुत जरूरी है। सो आप जहां पर भी जा रहे हैं रूल्स फॉलो करिए, क्योंकि इसीलिए वो बनाए जाते हैं आपकी सेफ्टी के लिए, सबकी सेफ्टी के लिए। सो मेक श्योर कि आप इन सारी चीजों को फॉलो करिए। बाकी सीट बेल्ट आप लगाते हो, सारे ट्रैफिक लाइट्स आप देख लेते हो, सब कुछ फॉलो कर लेते हो, बस खुश रहा करो यार, पानी पी लिया करो, एंड हाइड्रेट योरसेल्फ, गर्मी बड़ी है यार। और ये सुपर रोमांटिक गाना, केके की आवाज आए, हाय हाय मजा आ जाता है यार। कोई हो यार ऐसे रोमांटिक गाने आपके लिए भी गा दे। 2-1 एंड गो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: जॉय अलुकास ब्रिंग्स यू द जॉय ऑफ समर. द कूलेस्ट डील्स ऑन ज्वेलरी परचेसेस फॉर दिस समर आर हियर. फ्री कैश वाउचर्स ऑन योर डायमंड ज्वेलरी परचेसेस. 3.99% ऑनवर्ड्स अश्योर्ड लोवेस्ट मेकिंग चार्जेस एंड 0% डिडक्शन ऑन ऑल गोल्ड एक्सचेंज एंड

0: in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August.
1: Terms and conditions apply.
0: Joya Lucas, world's favorite jeweler.
2: गर्मी की तपती धूप में हमारे घरों का आराम हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपका एक छोटा सा कदम बड़ा और स्थायी बदलाव ला सकता है।
3: अपने एयर कंडीशनर का तापमान 23 से 24 डिग्री पर सेट करें और खिड़कियां बंद रखें। इससे हम सभी मिलकर बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले दबाव को कम कर सकते हैं।
2: ऊर्जा संरक्षण का मतलब त्याग नहीं है, बल्कि यह जागरूकता है। #KeepItSustained, क्योंकि सुविधाएं, कृतज्ञता और संसाधनों के प्रति जागरूकता ही उन्हें लंबे समय तक बनाए रख सकती है।
4: कतर जनरल City and Water Corporation, Karama.
5: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.

0: अमेजिंग ना, पहले गाने में लड़कों की तारीफ हो रही थी, है ना, मतलब लड़कों के बारे में बात हो रही थी, और उसके अगले गाने में जो है वो लड़कियों के बारे में बात हो रही है। परफेक्ट कॉम्बो। थोड़ी देर में ये कॉम्बो आप लोगों के पास में आने वाला है, लेकिन ये मौसम का कॉम्बो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। मौसम की अपडेट डालेंगे, ये कहती है कि 39 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर एंड फील्स लाइक 40 डिग्री सेल्सियस। हाईएस्ट जो था वो आज 46 डिग्री सेल्सियस था, एंड विंड जो है 16 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है, एंड ह्यूमिडिटी जो है 46% है। फट्टे चक्के पे ने कुल मिला के हाइड्रेट योर सेल्फ डालिंग, अपना मत्था जरा गर्म हो जाता ना थोड़ा गुस्से नाल, उन्होंने शांत रखा करो क्योंकि गर्मी और ज्यादा हैगी ऑलरेडी। 6:17:12 स्टूडियो की घड़ी सिमरन कौर थोड़े नाल है जो बिंदास है यार।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
1: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
0: योर स्पेशल ऑफर?
1: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
0: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
1: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
2: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो। लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: Commercial Bank presents CB 2026 Million Reals Dream.
4: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
3: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
4: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
3: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त। गदर की नंबर वन आरजे,
6: आरजे सिमरन के साथ।
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas.
1: Fresh on the grill, slow-cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की
2: तो फिर सोचना क्या अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो आज ही शुरू करो सेविंग्स कमर्शियल बैंक सेव एंड विन
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ
6: Zabardast evening. Make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

ईपीटी लोधिया आज दिवी चे गाना है सोचा तेरे बारे। अच्छा बताना मुझे कि इस गाने को सुनते सुनते आपको किसकी याद आ रही है, कौन है जो 24/7 आपके जहन में है? आती है यार, बस बहुत आती है, बस वही नहीं आता या वही नहीं आती है।

0: ਆ ਗਈ ਯਾਰ ਇਸ ਗਾਣੇ ਕੋ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਮੈਂ ਮੈਂ ਗਰੀ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਔਰ ਬਤਾ ਦਿਓ ਆਪਕੋ ਕਿਆ ਹੈ
1: ਰੇਡੀਓ ਓਲਿਵ ਪਰ ਵਾਟ ਅ ਵਾਇਰਲ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਆਰਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕੇ ਸਾਥ
0: हम सबको पता है कि आए दिन कोई ना कोई चॉकलेट जो है वो वायरल होता रहता है अलग स्टफिंग के साथ. वो पिस्टेशियो वाला कितना हुआ था, दुबई कुनाफा चॉकलेट, ये है ना. लेकिन अलग अलग चॉकलेट्स के बीच में ये कैसा चॉकलेट लेके आया. कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था, इंडिया में एक जगह पे एक चॉकलेट जो है वो वायरल हो रहा है. वो पता कौन सा चॉकलेट है, अभी आपने माथे पे हाथ मार लेना और आपने बोला व्हाट. जी हाँ बिल्कुल, वो चॉकलेट है साग का वाला चॉकलेट. एग्जैक्टली साग वाला चॉकलेट. आप चॉकलेट फोड़ोगे ऊपर से एकदम व्हाइट चॉकलेट लग रहा है, अंदर से वो साग निकल रहा है. माइक सीरियसली, मैं मतलब हम सब जो है चाहे वो भारतीय हैं चाहे वो पाकिस्तानी हैं चाहे वो जो भी श्रीलंकन है ना, यू नो नेपलीज हैं, मुझे लगता है कि सबकी मम्मियों के अंदर एक चीज होती है कि वो जो बिस्किट वाला डिब्बा हो या आपके प्रोटीन वाला डिब्बा हो, क्योंकि साग का एक सीजन होता है. वो सीजन आप साग जब रखते हो उसको फ्रीज करते हो तो आप तरह तरह के डिब्बों में साग रख देते हो, तो आपका दिल तब टूटता है जब आप लेने कुछ और जा रहे हो मम्मी ने अंदर साग रखा हुआ है. सो यार इस चॉकलेट को देख के आ रहा हूं, मुझे लग रहा है ये भी किसी मम्मी का ही आइडिया होने वाला है. सिमरन कौर आपके साथ जियो बिंदास. क्या आप ये साग वाला चॉकलेट ट्राई करना चाहेंगे, लेट मी नो 3311063 पर.
1: रेडियो ओलिव पर song of the hour. Yeah.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।

0: साजे सिमरन के साथ वाह वाह सब कुछ राइम हो गया यार। माई गॉड, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कौन सी फिल्म के बारे में।
1: दुनिया में आई हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
0: ट्रिविया में आज मैं आपको बताने वाली हूँ जुड़वा फिल्म के बारे में। सो क्या है कि गोविंदा जो थे वो पहले इस फिल्म को करने वाले थे, जुड़वा को, ठीक है। लेकिन सलमान खान ने गोविंदा को रिक्वेस्ट किया कि वो उनको ये फिल्म जो है वो करनी है, उनको ये प्रोजेक्ट जो है वो करना है। तो गोविंदा ने इस फिल्म के लिए वो बोला कि ठीक है यार तू कर ले, क्योंकि डेविड धवन की फिल्म जो थी वो यही कर रहे थे, गोविंदा कर रहे थे, है ना। एंड उसके बाद था कि ये सलमान खान की पहली फिल्म थी जो ईद पे रिलीज हुई थी, क्योंकि ईद पे सलमान खान की फिल्म्स जो है हमको पता है कि रिलीज होती है, लेकिन ये वाली फिल्म पहली बार ईद पे जो थी वो सलमान खान की रिलीज हुई थी। और इसमें जो रंभा थी एक्ट्रेस, उसका जो वॉइस ओवर था वो तबू ने किया था। सो इस फिल्म के बारे में और भी बहुत इंटरेस्टिंग बातें जो कि मैं आपको वापस लौट के बताने वाली हूँ। पला
2: तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है।
0: सुंदरी रेडियो ऑल इन करके तेरी जियो बिंदास।

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट. कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर. विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.
3: हाय, मैं हूं सुहाली खान एंड यू आर लिस्टिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास.
4: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
5: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
6: सिमरन के साथ.
7: Zabardast evening, make you drive golden with.
8: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
9: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: जी जुड़वा से आप ये गाने सुन रहे हैं। सलमान खान ने कमाल का रोल किया था यार इसमें। जैसे सलमान खान की बात कर रही थी कि ये पहली फिल्म थी डेविड धवन की जो कि सलमान खान ने की थी, क्योंकि डेविड धवन की फिल्मों के नाम से अगर किसी को जाना जाता था तो वो गोविंदा थे, राइट। सो या ये पहली फिल्म जब उन्होंने की तो डेविड धवन को लग नहीं रहा था कि भाई सलमान खान पता नहीं इस रोल को कैसा कर पाएंगे, लेकिन जो फाइनल आउटपुट थी इस फिल्म को लेकर वो बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग थी, क्योंकि इसमें बहुत ही बढ़िया एक्टिंग, बहुत ही बढ़िया रोल जो था वो सलमान खान ने किया था। एंड ये जो जुड़वा फिल्म थी वो जैकी चैन की एक फिल्म ट्विन ड्रैगन्स के से जो थी वो इंस्पायर्ड थी। सो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। सो या अगर आपने जुड़वा फिल्म नहीं देखी है तो क्यों नहीं देखी यार, सलमान खान ने बवाल मचा दिया यार इस फिल्म में। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए। इसी घंटे हम नेम गेम भी खेलने वाले, तो तैयार रहिएगा।
1: ये माने या ना माने मैं तो इस पे मर गया, ये लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह
0: हाय अल्लाह।
1: चलाओ ना नैनो से बाण रे, जान ले लो ना जान रे, जान ले लो ना जान रे।
0: सुनते रहो रेडियो ऑलिव पर, कहते रहो जियो बिंदास।
2: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,
3: जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM बिंदास। शैकमैन की पावर पैक्ड रेंज, हेवी ट्रक्स, टिपर्स, ट्रेलर्स और बूम ट्रक्स, दमदार परफॉर्मेंस और भरोसा सिर्फ कार्मिल के साथ। विजिट कार्मिल ग्रुप नाउ।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
3: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danat Al Bahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif Al Khor.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: जो बात मैं करने वाली हूँ ना रियलिटी चेक में बहुत गहरी होने वाली है, मेरे से खुद भी बर्दाश्त नहीं हो रही कि इतनी गहरी बात कैसे करने वाली हूँ मैं। किसी सुनियो कितना दिखी हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है थोड़े नाल तैयार हो
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: कहते कि पेंसिल के 100 गुना माफ थे, पेंसिल के 100 गुना माफ थे, पेन पर जिम्मेदारियां बहुत थी। यार देखो मुझे लगता है कि पेंसिल जो है ना वो बचपन है, जो भी गलतियां करो इरेजर है ना उससे मिट जाती है, लेकिन जब हमारी एडल्टिंग हो जाती है, जब हम बड़ी हो जाती है तो हम पेन बन जाते हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हो जाती है, फिर वो गुनाह कभी माफ नहीं होता है क्योंकि पेन जो है वो निशान छोड़ जाता है, जिसका जितना साफ करने की वो स्याही को कोशिश करते उतनी ज्यादा वो खराब होने लगती है। अब आप ये मत बोलना कि हम नई सर्फ यूज करके क्लीन हो जाता है, वो वाला मामला मत करना, हम यहाँ पे सीरियस बात कर रहे हैं, ठीक है। आई नो मैं बहुत फनी लगती हूँ ऐसी सीरियस बात करते हो, लेकिन मैं ऐसी भारी बातें करती हूँ। सो या हम सब जो है ना जब हम बड़े हो जाते हैं, हमारी एडल्टिंग हो जाती है, तो हम सब पेन हो जाते हैं, तो हमारे ऊपर जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाती हैं और फिर हमारी हर गलती जो है वो दिखाई जाती है, दोहराई जाती है, बताई जाती है लोगों को, है ना, उसको ऐसा सामने लोगों के दिखाया जाता है। सो लाइफ में ना मुझे लगता है कि अगर आपको आपकी कोई गलती दिखा रहा है, या तो आपका वो बहुत करीबी दोस्त है तो चलेगा, या फिर आपकी फैमिली है तो चलेगा, लेकिन ऐरा गहरा नत्थू गहरा अगर आपको आपकी गलती दिखा रहा है उसका बोल चल बेटा अपनी जिंदगी जी, ठीक है, मेरे को मेरा पता, मैं अपने आप संभाल लूंगा, तो आपको ऐसे लोगों का स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है।
2: पहला नशा, पहला खुमार।
0: और थोड़ा करो इंतजार, वाह क्या राइम हो गया, थोड़ी देर में लेके आ रही हूँ आपके लिए नेम गेम। चलो आ रही हूँ, फिर ये गाना सुनो।

0: 2026 million reals dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 million reals कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 reals ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स, क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड. दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर. सुख वाकिफ अलखोर.
3: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. गदर की नंबर वन आरजे,
4: आरजे सिमरन के साथ.
5: Zabardast evening, make you drive golden with.
6: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
7: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

सही सही गाना गाते गाते तड़ंग तंग तंग दंग तंग दंग क्यों करने लग गए यार. सारा गाना बड़ा सही चल रहा था. बताना होगा और व्हाट्सएप करके भेजना होगा 3311063 पर. जी हाँ, 3311063 पर आप मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेजिए. चलिए अगला गाना शुरू होने से पहले जितने भी नाम दिखेंगे वो सारे नाम मैं बोलने वाली हूँ. चलिए अब मैं बोलने स्टार्ट कर रही हूँ. अजय, असलम, शशिकांत, साजिद, मोहम्मद यूसुफ, पाली, फारा चांद, बिश्नु जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. नागेश जी, थैंक यू सो मच. फातिमा यूसुफ जी, थैंक यू सो मच. आयशा फलक जी, थैंक यू सो मच. जावेद जी, थैंक यू सो मच. बास जी, थैंक यू सो मच. सोनू जी, थैंक यू सो मच. खिजर हयात जी, थैंक यू सो मच. सौरभ जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. क्विकली नाम लिख के भेजो 3311063 पर. तबस्सुम जी, थैंक यू सो मच. फिरदौस जी, थैंक यू सो मच. अमजद जी, थैंक यू सो मच. नईम एंड जीत जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. करुणा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. हुजाइफा जी, थैंक यू सो मच. अकिला चरण जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. अफान जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. इसरा फलक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए. अगला गाना शुरू होने वाला है दोस्तों, कुछ ही सेकंड बाकी बचे हुए हैं. फटाफट से अपना नाम लिख दो अगर आपने अभी तक नहीं लिखा है. अहमद हुसैन जी, थैंक यू सो मच. उमेर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. नेहा जी, थैंक यू सो मच. जावेद अहमद जी, थैंक यू सो मच. निर्मला जी, थैंक यू सो मच. वसीफ जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. गैरी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. क्विकली अगला गाना शुरू होने वाला, फिर मत कहना. ओके, नासिर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. हाजिर जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. मोहम्मद जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. अबीहा जी, थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए. एंड दैट्स इट फॉर नाउ. जिन जिन लोगों के मैंने नाम ले लिया अब आप मुझे थैंक यू लिख सकते हैं और अपना फेवरेट वाला इमोजी जरूर बना के भेजना. अगले घंटे आपसे मिलते हैं एक चुटकी सॉन्ग में.

0: ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ। ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲ ਆਫ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
1: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

ये गाने की तो खूबसूरती कभी खत्म हो ही नहीं सकती यार। अमरिंदर गिल ने ऊपर से इसको गा दिया, और क्या चाहिए। 3, 2, 1 एंड गो।

0: और आप लोगों से गुजारिश है अपने फोन का रिकॉर्डर ऑन कर लो क्योंकि आपको जरूरत पड़ने वाली है।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया।
0: सो रिकॉर्डर ऑन कर लीजिए, मैं आपको एक चुटकी सॉन्ग सुनाने वाली हूँ। हो सकता है कि आपको 3 से 4 बार सुनना पड़े अगर आपको गाना नहीं समझ लग रहा है तो। लीजिए ये गाना सुनिए। बताओ ये कौन सा गाना है? सबके चेहरे पे स्माइल आ गई है, राइट? गाना नहीं समझ लग रहा तो आई होप आपने रिकॉर्ड कर लिया होगा। अगर आपको गाना पता है तो बताइए। वॉइस नोट रिकॉर्ड करना है प्लीज, लिख के मत लिखना स्टार्ट कर दिया। ए गंदे बच्चे हो यार, आप ऐसे नहीं किया करो, ठीक है? सो हे सिमरन, अपना नाम बताइए और बताइए गाना कौन सा। गा के बताएंगे तो और बढ़िया है, बोल के बताना तो भी चलेगा। और भेज दीजिए 3311063 पर। शर्त इतनी है कि आप लोग वॉइस नोट भेजेंगे। एक बार वापस से सुना रही हूँ। गाना शुरू हो जाता है, बताओ कौन सा गाना है।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

सारी जान, मेरा सब कुछ तू अपना कर ले, बस मेरी चाहत से रिश्ता कर ले। तेरे लिए मैं कुछ भी हो सकता हूँ, मगर मेरे लिए तू वो है

0: अगेन सोनू निगम जावेद अली की आवाज, वाओ क्या गाना यार।
1: बहुत बढ़िया
0: और ये बहुत ही बढ़िया वाला गाना मैंने आपको एक चुटकी सुनाया था।

0: सो आप लोगों के जवाब सुनते हैं.
1: सिमरन द सॉन्ग यू प्लेड इज भीगे होंठ तेरे हैं प्यासा दिल मेरा. ओके थैंक यू.
0: थैंक यू सो मच.
2: हेलो सिमरन, दिस इज राजीव मोदी. भीगे होंठ तेरे सॉन्ग.
0: ओके
2: द दिस इज द सॉन्ग यू प्लेड जस्ट नाउ.
0: थैंक यू.
3: सिमरन जी कैसी हो? अच्छी.
0: बहुत बढ़िया दोस्त.
3: ये एक्चुअली गाना तो मुझे याद है कौन सा है वो, बट थोड़ा ऑकवर्ड है. लेकिन कहते हैं ना एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड कॉम्पिटिशन, तो ये गाना है भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा.
0: अरे दोस्त इतना शर्मा क्यों रहे यार.
4: भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा, लगे अपने सा मुझे तन तेरा. हेलो सिमरन, प्रेम कलवानी बोल रहा हूँ. मर्डर मूवी का गाना, फेमस गाना.
0: थैंक यू सो मच सर.
5: हेलो, हाय सिमरन.
0: हेलो जी.
5: ये सिमरन, ये गाना है.
0: कौन सा गाना है?
5: भीगे होंठ तेरे प्यासा दिल मेरा.
0: क्या बात है यार. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू सबके मैसेजेस के लिए. तो फिर आप ये गाना डिजर्व करते हो. लो जी.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

भाई साहब ये गाना अलग लेवल पे है। खासियत ये है कि कल फिर से 5 बजे शाम को मिलती हूँ ना आपसे।

लैला मजनू के जोन में जाने के लिए तैयार हो जाए, थोड़ी देर में ये गाना प्ले होगा। चलिए फिर कल मिलते हैं शाम को 5 बजे। खाते पीते रहो, ऐश करते रहो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. सो आज व्हाट्सएप का जमाना है, ब्लू टिक ना आए तो टेंशन हो जाती है. लेकिन सोचिए अगर आपका भेजा हुआ एक लेटर 52 ईयर्स के बाद किसी तक पहुंचे तो. ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये सच में हुआ था. 1969 में इंग्लैंड के एक आदमी ने अपने दोस्त को एक हैंड रिटन लेटर भेजा. लेटर डिलीवर ही नहीं हुआ, ना कोई सेंडर का पता चला ना रिसीवर का. और फिर 2021 में रॉयल मेल के एक सॉर्टिंग सिस्टम में वो पुराना एनवलप मिला. थोड़ा येलो हो चुका था, कॉर्नर्स मुरझा गए थे, लेकिन एड्रेस अब भी साफ था. जब वो लेटर फाइनली डिलीवर हुआ तो जिस घर का एड्रेस था वहाँ अब अगली जनरेशन रहती थी. उन्होंने एनवलप खोला और अंदर लिखे लफ्ज़ों ने उन्हें उनके फैमिली के एक पुराने चैप्टर से मिलवा दिया. सोचिए एक कागज़ जो आधी सदी तक, मतलब ऑलमोस्ट 50 ईयर्स से ज़्यादा हो चुके थे, सफ़र करता है और जब पहुंचा तब उसकी वैल्यू ख़त्म नहीं हुई थी. शायद वर्ड्स कभी एक्सपायर नहीं होते, सिर्फ उनके पढ़ने का वक्त बदल जाता है. सो आज का सवाल है आपसे कि अगर आप फ्यूचर में किसी अपने के लिए एक लेटर लिखें तो उसमें सबसे पहली लाइन क्या होगी. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मुस्कान है आपके साथ और मुझे ऐसी कहानियाँ सुनना और सुनाना दोनों ही बहुत पसंद है. सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान. नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है Midnight Lounge.
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM.

कभी रेस्टोरेंट जाकर मेन्यू देखकर कंफ्यूजन हुआ है? मतलब मुझे तो बहुत होता है, मतलब पनीर लें या फिर पास्ता खाए, लेकिन दुनिया में एक रेस्टोरेंट ऐसा भी है जहां पर मेन्यू होता ही नहीं है। स्पेन के एक जगह पर एक फेमस डाइनिंग ट्रेडिशन है, और जापान में भी एक ओमाकासा रेस्टोरेंट है, इसी कॉन्सेप्ट पर चलता है। आप सिर्फ बताइए और शेफ से एक ही बात कहिए कि आई ट्रस्ट यू, उसके बाद जो खाना आपकी टेबल पर आता है उसका डिसीजन आप नहीं, शेफ लेता है, सीजन के हिसाब से, फ्रेश इंग्रेडिएंट के हिसाब से, और कभी कभी आपके एक्सप्रेशंस देखकर। हर प्लेट एक सरप्राइज होती है, और शायद इसी वजह से लोग सिर्फ खाना खाने नहीं बल्कि एक्सपीरियंस को लेने के लिए वहां पर जाते हैं। कितनी अजीब सी बात है, लाइफ में भी हम हर चीज पहले से प्लान करते हैं, लेकिन कुछ बेस्ट चीजें जो है वो नहीं होती। तो अब आप बताइए कि आपको ऐसे बिना मेन्यू के डिनर सर्व हो कहीं पर तो एक्साइटमेंट ज्यादा होगी या नर्वसनेस? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान, नंबर है 3311063। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

सो लंदन और लंदन के नाम बहुत सारी चीज़ें, बिग बैंग की आवाज़ ज़रूर याद आती है जैसे ही लंदन का नाम आता है, लेकिन 2017 में एक दिन अचानक की आवाज़ बंद हो गई। रीज़न, रिपेयर वर्क। 150 साल से ज़्यादा पुरानी इस आइकॉनिक क्लॉक को रीस्टोर करना था। टूरिस्ट रोज़ आते थे, लेकिन जब बेल नहीं बजी लंदन को एहसास हुआ कि हम कितनी चीज़ों को तब नोटिस करते हैं जब वो हमें मतलब मिलती नहीं है, हमसे दूर हो जाती हैं। सो कई लंदन के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने कहा कि सिटी अजीब सी लग रही है, क्लॉक तो वही थी, बिल्डिंग भी वही थी, बस उसकी आवाज़ नहीं थी। और तब समझ आया कि कुछ चीज़ें सिर्फ बैकग्राउंड नॉइस नहीं होती, वो हमारी यादों का ना हिस्सा बन जाती हैं। जैसे घर की चाय की खुशबू, मम्मी की आवाज़ या घर में बना हुआ कुछ घर का खाना। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपकी लाइफ की वो कौन सी आवाज़ है जो एक दिन ना सुनाई दे तो सबसे ज्यादा आप उसे मिस करने लग जाते हो। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। मैं हूँ मुस्कान। स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

So, आज की कहानी है 1995 की एक यंग डायरेक्टर जिसकी पहली फिल्म थी, नाम था आदित्य चोपड़ा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। अब इसका लास्ट का क्लाइमेक्स जो है वो शूट होना था रेलवे स्टेशन, राज, सिमरन और वो फेमस सी ट्रेन। आज वो सीन बॉलीवुड हिस्ट्री का हिस्सा है, लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि ये सीन इतना आइकॉनिक बन जाएगा। आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि ऑडियंस को सिर्फ रीयूनियन ना दिखे बल्कि एक डिसीजन दिखे। सिमरन का ट्रेन पकड़ना सिर्फ राज तक पहुँचना नहीं था, अपनी ज़िंदगी का फैसला लेना भी था। शाहरुख खान ने बाद में एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था कि लोग इस सीन को इतने सालों बाद भी याद रखेंगे। आज भी यूरोप से लेकर इंडिया तक लोग उस ट्रेन वाले जो सीन है उसको रिक्रिएट करते हैं। मतलब कभी कभी तो लोग इंस्टाग्राम पर भी डालते हैं, और कभी कभी एक फिल्म का सीन जो है वो सिर्फ सिनेमा नहीं होता, वो जनरेशन की मेमोरी बन जाता है। और इसीलिए DDLJ आज भी चलती है सिर्फ थिएटर्स में नहीं, लोगों के दिलों में। सो अगर आपको अपनी लाइफ को एक बॉलीवुड मूवी का टाइटल देना हो तो वो क्या होगा? और अगर आपको ये मौका मिले इस राज और सिमरन वाला सीन रिक्रिएट करने का, तो आप बताइए कि आप कहाँ पर ये सीन ट्रेन वाला रिक्रिएट करना चाहोगे। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान। 3311106 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लव।
2: ये है मिडनाइट

Good evening, welcome back. You are listening Radio Ola 106.3 FM. This is me, Muskan, with you. Aur show ka naam, yes, of course, Midnight Lounge. आज मैं आपको दुनिया की एक ऐसी बुकशॉप में लेकर चलती हूँ जहाँ एक वक्त में सिर्फ दो लोग ही खड़े रह सकते हैं. यस, इंग्लैंड के एक विलेज में जिसका नाम है सेडबर्ग, वहाँ पर एक टाइनी सेकेंड हैंड बुक स्टोर है जिसे लोग प्यार से दुनिया की सबसे छोटी बुक स्टोर में से एक कहते हैं. मतलब दरवाज़ा इतना छोटा कि अगर कोई अंदर बुक देख रहा हो तो दूसरे को बाहर वेट करना पड़ता है. लेकिन हैरानी की बात यह है कि लोग वहाँ किताब खरीदने से ज़्यादा उस जगह को फील करने के लिए आते हैं. शेल्फ छोटी है लेकिन कहानियाँ हज़ारों. ओनर्स कहते हैं कि वहाँ पर पीपल डोंट रिमेंबर हाउ मेनी बुक्स दे बॉट, दे रिमेंबर हाउ दैट टाइनी शॉप मेड देम फील. और शायद इसीलिए लाइफ भी ऐसे ही है. खुशियाँ हमेशा बड़े मॉल्स में नहीं मिलती, कभी कभी एक छोटी सी जगह, छोटी सी किताब, छोटी सी मुलाकात सालों तक याद रह जाती है. और मुझे तो लगता है कि जब आप दोस्तों के साथ बाहर ऐसे चाय और कड़क पीने के लिए जाते हो ना, तभी भी आपको वो एक याद रह जाता है. सो आपको बड़े शॉपिंग मॉल्स पसंद हैं या फिर छोटी कोजी जगह जहाँ पर हर चीज़ की अपनी एक कहानी होती है? सो बताइए मुझे 3311063 पर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओनली 106.3 FM जियो बिंदास। मॉर्निंग यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: देखो तो हम पास लेकिन सोचो कितनी दूरी है, कैसी ये मजबूरी है।
1: सो हैव यू नोटिस्ड कि सुबह काफ़ी टाइम सिर्फ ये डिसाइड करने में निकल जाता है कि आज क्या पहने, लेकिन दुनिया के कुछ सक्सेसफुल लोगों ने ये डिसीजन ही अपनी लाइफ से हटा दिया। स्टीव जॉब्स हर रोज ऑलमोस्ट वही ब्लैक टर्टल नेक टी शर्ट, मार्क जुकरबर्ग ऑलमोस्ट सेम ग्रे टी शर्ट। रीजन फैशन नहीं था, रीजन था डिसीजन फटीक। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ओवर 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम येस ऑफकोर्स मिड नाइट लाउंज। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हर छोटा डिसीजन भी हमारे दिमाग की एनर्जी यूज करता है, इसीलिए कुछ लोग सोचते हैं कि कपड़े डिसाइड करने में एनर्जी बचाओ। मतलब मैं तो अपने कपड़े रात को ही डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे सुबह क्या पहना है, सो दैट मैं उसे आयरन कर पाऊँ, क्योंकि सुबह तो टाइम होता नहीं है और उसे इंपॉर्टेंट काम में यू नो जो टाइम है उसे लगाना चाहिए। फनी बात यह है कि लोगों को लगता है कि रोज सेम कपड़े क्यों पहनते हैं, लेकिन उनके लिए ये सिंप्लिसिटी थी और सिंप्लिसिटी कभी कभी प्रोडक्टिविटी बन जाती है। वैसे टेंशन मत लीजिए, मिडनाइट लाउंज ऑफिशियली ये रिकमेंड नहीं करता कि आप सब एक ही टी शर्ट पहनना शुरू कर दीजिए, लेकिन यस आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग ज़रूर है। सो अगर आपको पूरे एक महीने सिर्फ एक ही कलर पहनना पड़े तो कौन सा कलर आप चूज करोगे? 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

अच्छा, आज एक बहुत ही अजीब सी बात है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर मैं कहूँ दुनिया में एक एयरपोर्ट ऐसा है जहाँ लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए नहीं जाते, वीकेंड स्पेंड करने के लिए जाते हैं, तो आपको विश्वास होगा? बताती हूँ कैसे। सिंगापुर का ज्वेल शांगी एयरपोर्ट है, यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा इंडोर वाटरफॉल है, इंडोर फॉरेस्ट है, वॉकिंग ट्रेल्स हैं, मिरर मेज है, बटरफ्लाई गार्डन है, और इतनी ग्रीनरी कि कई लोग तो कहते हैं कि एयरपोर्ट कम ये हॉलीडे डेस्टिनेशन ज़्यादा लगता है। जो सिंगापुर में लोग रहते हैं वो कभी कभी बिना टिकट के भी वहाँ पर कॉफ़ी पीने, फोटोज़ लेने या बस वॉक करने के लिए चले जाते हैं। सो आई रियलाइज लाइक कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जहाँ नॉर्मली लोग सिर्फ भागते हुए दिखते हैं, उस जगह को किसी ने इतना खूबसूरत बना दिया कि लोग रुकना चाहते हैं। शायद हर जगह को सिर्फ डेस्टिनेशन नहीं, एक्सपीरियंस बनाना पड़ता है। सो बताइए, अगर एयरपोर्ट पर 5 घंटे का लेओवर हो तो आप शॉपिंग करोगे या फिर आराम से एक कप कॉफ़ी लेके बैठना चाहोगे? ये बस एक्सप्लोर करते रहोगे, ये देखते रहोगे कि देखते हैं कि यहाँ पर क्या नया है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM। मैं हूँ मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज, जहाँ पर हम बातें करते हैं कुछ कहानी, कुछ किस्सों की। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल ऑफ, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास

सो ये आज की लास्ट स्टोरी है और शायद सबसे इंटरेस्टिंग भी। आज के जमाने में कैफे चूज करते वक्त पहला सवाल क्या होता है? वाईफाई ना। लेकिन दुनिया में कुछ कैफेज में मतलब एग्जैक्टली इसका उल्टा किया है। उन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि नो वाईफाई, टॉक टू ईच अदर। अब शुरू में लोग थोड़ा सरप्राइज हुए, कुछ लोग उठकर चले भी गए, लेकिन धीरे धीरे वही कैफे फेमस हो गया। लोग किताबें लेकर आने लगे, चेस खेलने लगे, स्ट्रेंजर्स बात करने लगे। एक ओनर ने इंटरव्यू में कहा कि वी डिडेंट एक्चुअली रिमूव द इंटरनेट, वी जस्ट ट्राइड टू ब्रिंग कॉन्वर्सेशन बैक। कितनी सिंपल सी बात है, कभी कभी नेटवर्क फुल होता है लेकिन कॉन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा मिसिंग कि हम क्या ही कहें। और कभी कभी ज़ीरो वाईफाई के साथ यादें और सिग्नल दोनों मिल जाते हैं। सो आज का सवाल है आपसे कि अगर आप किसी कैफ़े में जाएं और वहाँ वाईफाई ना हो तो पहला काम क्या करोगे? किताब खोलोगे या किसी स्ट्रेंजर से बात करने लग जाओगे या तुरंत कोई दूसरा कैफे ढूंढने लगोगे? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव। फॉर नाउ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह पर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुनते रहिए रेडियो ऑलिव 106.3 FM। आई हैव माई व्हाट्सएप नंबर, आप वहां पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं 3311063। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम
3: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिन

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: नहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: फिर भी जान है मेरी।
1: You are listening to Radio Olive 106.3 FM, Geo Bindas.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।